FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 5:58 बजकर 33 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालतोरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधनपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्व मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रमाणन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रकृति हर क्षण किसी न किसी प्रारूप में ईश्वर की स्तुति करती है, भले वो भोर की पहली किरण हो या सुहानी संध्या।

हम सभी में बहुत से अवगुण हैं और इस मन को निर्मल करना आसान नहीं। ये केवल संभव है तो प्रभु के नाम सिमरन से। यदि प्रभु हमारे अवगुणों की ओर ना देखें और हम पर अपनी कृपा करें।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है, प्रस्तुति स्वर सुरेश वाडेकर का है।

सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, आज के दिवस की बात करें तो आज शनिवार है। विक्रम संवत 2083 के आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT

अभी आपने सुना, अभी आप सुन रहे थे देशगान FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। ग्राम संसार का समय रहेगा शाम 7:00। सुबह 7:40 पर समय रहेगा हरियाणवी लोकगीत के कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा का। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का विषय होगा चुनाव में सावधानियां। वार्ताकार होंगी डॉक्टर संगीता शर्मा, साथ ही जानकारी होगी गुलजारी लाल नंदा जयंती पर। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल पुकारे। कार्यक्रम स्वरांजलि का आनंद लीजिएगा सुबह 9:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा सुबह 10:00। शाम 5:05 पर हम लाएंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम जय जवान का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। शाम 7:45 पर समय रहेगा कार्यक्रम गुलदस्ता का।

ये थी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 सुनिएगा हिंदी समाचार, 7:05 पर समय होगा अंग्रेजी समाचार का, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला

0: रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल्लीनों के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए- मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश-ए- मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex

श्रोताओं, अभी आपने सुना गीत फिल्म आनंद से। इस गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था सलील चौधरी का और आवाज़ थी मुकेश की। और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना 1959 में आई फिल्म गेस्ट हाउस से। इस गीत को लिखा था प्रेम धवन ने और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश। और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म इंतकाम से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल पुकारे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम में ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जीने की राह से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

श्रोताओं, आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जीने की राह फिल्म से गीत। और ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लता मंगेशकर का।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म जीने की राह से, और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं 1957 में आई फिल्म बरखा से। इस गीत के गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत है चित्रगुप्त का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गीत 1957 में आई फिल्म बरखा से। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल पुकारे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से FM बैंड 101.4 MHz पर। तो आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में हम आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं। ये गीत लिखा हुआ है समीर का और समीर के लिखे इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू ने और संगीत से नवाजा है नदीम श्रवण ने। और ये गीत आप सुनेंगे फिल्म दीवाना से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दीवाना फिल्म से गीत, और इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का और आवाज़ थी कुमार सानू की। और आइए अब इसी गीत के साथ संपन्न होता है आज का कार्यक्रम दिल पुकारे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल पुकारे FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम बज जाए नगाड़ा। कार्यक्रम में पहले सुनिए ये संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

पल की मोहलत मिला न मांगे तो चाहे रोले चाहे डर ले, चाहे रोले चाहे डर ले, फिर तने

जगमग नाड़ हिलाएगी, आशा तृष्णा की व्याधि फिर भी न दूर टलाएगी। अरे आशा तृष्णा की व्याधिया फिर भी न दूर टलाएगी। जम की फांसी आन घलाएगी, जम की फांसी आन घलाएगी।

हैं। बाइबल में है गोड़ ईसाई सिख ग्रंथ को गाते हैं, ये सिख ग्रंथ को गाते हैं। शिरडी साईं दादू।

मन बस मैं जगदीश चंद्र दसो इंद्री कर बस मैं भाई रे मन बस मैं जगदीश इंद्री दसो इंद्री कर बस मैं काम क्रोध मद लोभ मोह के तू शत्रु मार गिरारण मैं फिर आशा तृष्णा विषा वासना हो जा खत्म तेरी छन मैं तू राम नाम का सुमिरन कर चाहे घरा बैठ चाहे कर बन मैं रे घरा बैठ चाहे कर बन मैं और ज्ञान की जोत

भाई ढंग पुराना बदल गया, भाई नर नारा के ख्याल बदल गए, किसा जमाना बदल गया।

आजादी की जगह देश में बर्बादी होती दिखे, अच्छी नीति खत्म होगी या जनता दुख रोती दिखे, गई सच्चाई उठ झूठिया न्यू झगड़े जोती दिखे।

0: बदल गए साथ मना बदल गया। अरे घी की
1: श्रोताओं, कार्यक्रम बाजे नगाड़ा में ये अगली रचना राज नन्हा राम गिल की आवाज़ में।

ओ मनुष्य शरीर जा छूट फेरे तेरी कोई भी बात रवे ना रे पांच चोर और दस ठगनी तेरे हर दम साथ रवे ना रे जन्म जन्म की कुंजी ले जा या तो लती घाती रवे ना रे सत्संग भजने शांति तज कै करता उत्पात रवे नारे सत्संग भजने शांति तज कै करता उत्पात मन रूपी जा ऊट फेंकी हेरे मन रूपी जा ऊट फेंक फेरा पड़ा रे तम रोवस।

बात बरन की तेरी झूठी बोर रवे नारे पांच तीन दस बत्र छह का तेरा लगता जोरी रवे नारे इक्कीस हजार

पिछला रास्ता तने साफ किया ने, पिछला रास्ता तने साफ किया ने, क्यों सूलिया गम में ओ वैसे हीरा जन में अनमोल तेरा ऊ कोटी बदले खोवे जाग।

बिडाई बोध निकी इस दुनिया में खेल तमाशा यार देश गवाई दो दिन की गलकट है फिर भरे पेट में पाप कमाई दो दिन की गीता बात विचार किया तेरी गलत पढ़ाई दो दिन की गीता बात विचार किया न तेरी गलत पढ़ाई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत

0: किसान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शाहदुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी औसत सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा

0: इसके लिए वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्टोर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में

0: मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी, लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects.

एफएम बैंड 104 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

एमिशन है यानी कार्बन फुटप्रिंट है उस और भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना, उसे बहुत कम करने की ज़रूरत है हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, है ना। तो दोस्तों इसी के लिए परिवर्तन किए भी जा रहे हैं और जो हमारा आज का प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा है। तो आइए हम अपने श्रोताओं को बताते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों आज आपको बताना है कि किस संगठन ने MSME के हरित परिवर्तन के लिए रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जो है वो जारी की है। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, आज आपको बताना है कि किस संगठन ने MSME के हरित परिवर्तन के लिए रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। और इस प्रश्न का जवाब हमारे श्रोता दे सकते हैं 8:45 तक हमारे केंद्र के नंबर 9466021336 पर SMS के माध्यम से।

दोस्तों आज बदलती हुई तकनीक ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है ना, कितना सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, प्रिंटर और कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, कितने सारे गैजेट्स हैं जो आज हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं दोस्तों। लेकिन जब ये हमारे उपकरण हैं हमारे यूज़ में नहीं रहते, जब हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? जी, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी ई वेस्ट। दोस्तों ई वेस्ट सिर्फ बेकार सामान नहीं है, मतलब जो हमारे कार्य में अब नहीं आ पा रहा, सिर्फ वो सामान नहीं है, बल्कि अगर इसका ढंग से निपटान ना किया जाए तो ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि इसमें सीसा, पारा, कैडमियम और बहुत सारे ऐसे विषैले तत्व होते हैं जो मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों ई वेस्ट जो है वो आजकल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि नई तकनीक जो है वो तेज़ी से आ रही है। नई तकनीक आने के साथ साथ जैसी तकनीक बदलती है तो उपकरण बदलने की ज़रूरत पड़ती है, और हम आजकल इतने गैजेट्स यूज़ करते हैं, इतने उपकरण यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, और इन्हें हम यूज़ करते हैं लेकिन इन्हें हम बहुत जल्दी बदलते भी हैं। तो बार बार मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बदलने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो ई वेस्ट को बढ़ावा दे रही है। इसी के साथ साथ जब हमारा कोई उपकरण खराब हो जाता है तो हम उसकी मुरम्मत कराने के बजाय नया खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि हम अगर वो मरम्मत होने लायक है तो हम उसकी मरम्मत करवा कर उसे यूज़ कर सकते हैं कुछ समय और के लिए। तो दोस्तों ये जो कुछ बातें हैं, इन वजह से ई वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ई वेस्ट का बढ़ना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है, बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए ज़रूरी है ई वेस्ट प्रबंधन करने के लिए, यानी ई वेस्ट मैनेजमेंट करने की। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है और हम ई वेस्ट किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ई वेस्ट का प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, आपको इस बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन आइए पहले हो जाइए गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या है ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और किस तरीके से ई वेस्ट प्रबंधन किया जा सकता है और ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ई वेस्ट का उचित प्रबंधन करना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायता करता है और जो हमारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी हमारे गैजेट्स होते हैं उनमें जो तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी जैसी जो धातुएँ यूज़ हुई होती हैं, मेटल्स यूज़ हुई होती हैं, उनका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं अगर हम ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज करें, उसका अच्छे से प्रबंधन करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर हम ई वेस्ट को अच्छे से इसका प्रबंधन करते हैं तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम ई वेस्ट प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका उपयोग हम पूरी आयु तक कर सकते हैं, यानी जब तक हम जब तक वो चलने योग्य हैं हम उनका यूज़ करें अच्छे से। जहाँ संभव हो उपकरण की मरम्मत कराकर उनका दोबारा से उपयोग करें। जो भी अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान है यानी जो अब हमारे कार्य में नहीं आ रहा, जिसे अब हम यूज़ नहीं कर रहे, उसे अधिकृत ई वेस्ट संग्रह केंद्रों पर ही जमा करें। जो भी हमारे पुराने उपकरण हैं अब हम नहीं यूज़ कर रहे, उन्हें खुले में ना फेंकें और ना ही जलाएं, ना ही मिट्टी में दबाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो मिट्टी या जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे सकता है। और दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रख कर हम ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी ई वेस्ट प्रबंधन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
2: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर।

0: क्षेत्र 8708903436।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न किया था कि किस संगठन ने MSME के हरित परिवर्तन के लिए रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने MSME के हरित परिवर्तन के लिए रोड मैप ये रिपोर्ट जारी की है, जो विकसित भारत 2047 और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य से जुड़ी है। दोस्तों, ये 10 वर्षों की कार्य योजना है, जिसमें 69 मिलियन MSME कम कार्बन विकास की ओर बढ़ सके। और रोड मैप में ऊर्जा दक्षता, हरित बिजली, वैकल्पिक ईंधन और NPMA जैसी संस्थान की बात की गई है। और दोस्तों, जिन श्रोताओं ने हमें आज के प्रश्न की सही उत्तर दिया है, आइए हम आपको बताते हैं उन श्रोताओं के नाम। नाहन हिमाचल प्रदेश से आप हैं योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर। योगी मोहल्ला भराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल। आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी। दरियापुर बाबली महाराज से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। गांव सातड़ी से ईश्वर दयाल कंबोज, लाजवंती कंबोज और भव्य कंबोज हमें सही जवाब दिया है। गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा ने। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आप हैं वसीम आसमा मोगा, अल्ताब आसमा मोगा और सरफुद्दीन आसमा मोगा। इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से हनुमान विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा और योगेश कड़वासरा ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से आप हैं सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह। झगुड़ी से रणधीर बांगड़ युगम और नागल से आप हैं इंदराज। इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मूणत और रविदास नगर थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र से आप हैं अश्वनी कराडिया, कृतिका कराडिया और सूबेदार अमरनाथ। सोलन हिमाचल प्रदेश से आप हैं टिया कृष्णा। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं रजाक मोहम्मद, समीम बेगम और इरफान खान। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन और हेयांश कुमार चंदन। एटा रोड गंजनवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं बीपी गौतम और सरिता गौतम। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से आप हैं रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना। शेरवानी स्कूल गंजनवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। खमरिया छत्तीसगढ़ से आप हैं साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति। भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। गांधीनगर गुजरात से आप हैं सुरेश राठौड़ और हमें सही जवाब दिया है। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से आप हैं सरोज सैनी, राकेश सैनी और यादवेंद्र सैनी। लाडवा से चांद ढींगरा, ईशु और एमी। गांव मुरादगढ़ से आप हैं रमेश कुमार कंबोज, वंश और भुवेश कुमार कंबोज। छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय।

रमित कुमार राय, जिला सिरमौर, नेहर सवार, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आप हैं, विनोद तोमर, संजू देवी और ममता देवी, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर अबारी, मौनाथ जी आपका नाम हो गया है, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल, मौनाज भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, बिहार स्टेट से डब्लू वली बेलदार, उल्लाह वली बेलदार और सोनम वली बेलदार, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्या कुमारी, रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, साहिल पुजारा, राजकोट गुजरात से आप हैं रश्मि झरना, कदुआपड़ा जगत सिंहपुर उड़ीसा से कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, बोडसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, बीमा साहू हमें सही जवाब दिया है, सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं कोमल सेन, तोशन सेन और विनायक सेन, चक 5 एमडी अनूपगढ़ राजस्थान से आप हैं मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, गुमला झारखंड से एसएम जावेद, बंडिंगखेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और शरीफ नवाज, मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया और पप्पी भाटिया, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, सौराष्ट्र राजकोट से आप है प्रवीण भाई, हिरेन भाई और जगदीश भाई गुजराती, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी और हमें सही जवाब दिया है आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े, डोंडी लोहारा से तुषार डॉम, राधिका डॉम और खंडवा से अनीता बेलदार, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया और बेबी गरिमा बागड़िया और इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं बालाजी चौक यवतमाल से ओटी श्रीवास, मीना श्रीवास और पोपो रानी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पीएस नौहानकर, निर्मला नौहानकर और विशाल नौहानकर, नाला सोपारा मुंबई से आसिफ शेख, रूमा शेख और सुलेमन शेख, शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर और बेबी प्रियांशी, बनबगेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा और बेबी ख्याति, इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है रसेड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और पोता मास्टर अल कबीर, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से आप हैं मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे, गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी और लड्डू कुमारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी और कमरून निशा और यश मंसूरी, गांव नलोई हिसार से सज्जन जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा, चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है गांव जाखोद से आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश, डोंडी लोहारा से आप हैं प्रभा जाटव और राधिका जाटव, शनि चौक खंडवा से अनीता कुमारी और दुर्गा कुमारी, सदर बाजार कुराव मिली से अनिल कुमार वर्मा, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से आप हैं निसार सलमानी और नौशाद सलमानी, खैल बाजार पानीपत से आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया, कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से आप हैं सुरेंद्र दत्ता, बंटी शंटी, कासगंज उत्तर प्रदेश से अनुपमा, कुसुम और अपूर्वा, गांव चोहलादा बागपत से संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा,
नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनज

वीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से आप हैं योगेश गुजराती, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और दिशानी निमित। इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कृति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। श्रोताओं केवल एक ही बार आप प्रश्न का सही जवाब दिया कीजिए। सांगली से आप हैं हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे। गांव बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, गायत्री देवांगन, यशवर्धन। लुम्बिनी नगर बडनेरा अमरावती से हिम्मत राव शंगारे और पद्मताई शंगारे। बेंगलोर से आप हैं मूर्ति के हाली, भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता। संबलपुर काकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। प्रतापगढ़ कुरुक्षेत्र से आप हैं माघीराम सैनी, पूनम सैनी। बेंगलोर से आप हैं जयश्री सुनील। डोंडी लोहारा से राधिका बेलदार और प्रभा बेलदार और इंदिरा विहार। दिल्ली से आप हैं डब्लू अंसारी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, चैतन्य मस्किन, मेघा आशीष। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से आप हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे। हमें सही जवाब दिया है आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े। गांव उगाला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया। जी आप एक ही बार, श्रोताओं एक ही बार मैसेज किया कीजिए। मदनपुर बेरड़ी मध्य प्रदेश से आप हैं हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा। इसके साथ हमें सही जवाब दिया है सेक्टर 18 जगाधरी से श्रोता है विनय मोहन और मीनाक्षी। भीमखोज तरपोंगी से आप हैं संतोष गुप्ता और देवकी गुप्ता। बिहार स्टेट डूमराव से वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गोरैया जलंधर से आप हैं अशोक जाटव। कलानौर से नरेंद्र शर्मा और किरण शर्मा। बिहार रेडियो लिसनर क्लब से सुधा शर्मा और अनामिका शर्मा। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गोड़, सुयश गोड़ और आशीष गोड़। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। वीरम गांव से अर्चना खुशी और कौशल जोशी। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई, हीरेन भाई और जगदीश भाई गुजराती। अंबाला से आप हैं बंशीलाल संधू। यवतमाल महाराष्ट्र से वीरेंदा राम टेके, पूजा राम टेके, पोपो राम टेके। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और वसीम अकरम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और कीर्ति कृति भारती। पंचकुला चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु तुलसी मस्किन। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। नागपुर से आप हैं कमल साहनी। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से जी आपका नाम हो गया है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके। मोटाला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर, रतन माला। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, शीला धनजे। राजा जी नगर बेंगलोर से आप हैं एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया और प्रवीण वाक्तरिया। बघेरा दुर्ग से आप हैं संतोष नामदेव। और दोस्तों ये थे उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। दोस्तों अभी हमने कार्यक्रम में आपसे साझा किया आज के प्रश्न का सही जवाब और उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों आज 4 जुलाई है और गुलजारी लाल नंदा की जयंती 4 जुलाई को मनाई जाती है। उनका जन्म जो है वो 4 जुलाई 1898 को तत्कालीन पंजाब के सियालकोट में हुआ था। गुलजारी लाल नंदा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक समर्पित सेनानी और समाज सेवी और सादगी की मिसाल थे। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, 27 मई 1964 से लेकर जून 2, 1964 तक, और दूसरी बार जनवरी 24 जनवरी 1966 तक। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से 1997 में सम्मानित भी किया गया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। इसी के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रियता से भूमिका भी निभाई, योजना, श्रम, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीतिगत योगदान दिया। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा के जीवन सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ईमानदारी, सादगी और नैतिक मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं बल्कि ईमानदारी, सेवा और कर्तव्य निष्ठा से पहचाना जाता है। गुलजारी लाल नंदा का जीवन हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। गुलजारी लाल नंदा का निधन जो है वो 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद में हुआ था। दोस्तों ये थी जानकारी गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में, और आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपसे बात कर रहे थे कि जब ई वेस्ट का प्रबंधन अच्छे से किया जाता है तो किस तरीके से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होता है। तो आइए आपको इस बारे में देते हैं जानकारी। दोस्तों, जब ई वेस्ट को कूड़े के ढेर में फेंकने की बजाय या जलाने की बजाय हम उसका अच्छे से निपटान करते हैं, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं निकलती, उससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ई वेस्ट को अगर कूड़े के ढेर में फेंका जाए या जलाया जाए तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें जो हैं वो निकलती हैं, और अगर हम उनका अच्छे तरीके से निपटान करें, वैज्ञानिक तरीके से निपटान करें, तो इस उत्सर्जन में जो है वो कमी आती है, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। इसी के साथ साथ जब हम किन्हीं भी गैजेट्स का उपयोग करते हैं और अगर उनमें कहीं कोई खराबी आ गई है और उनका हम मरम्मत कराकर दोबारा उपयोग करते हैं, यानी पुनः उपयोग करते हैं या उन्हें रिसाइकिल किया जाता है, तो इससे संसाधनों का बार बार उपयोग होता है और कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, और इसी से ही सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा भी मिलता है। दोस्तों, जब ई वेस्ट प्रबंधन जिम्मेदारी पूर्वक किया जाता है तो वो उद्योग और उपभोक्ता दोनों के लिए ही एक अच्छा विकल्प रहता है, एक टिकाऊ विकल्प रहता है, जिससे नेट जीरो कार्बन की दिशा में एक ये महत्वपूर्ण कदम है और इससे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और ये थी जानकारी कि ई वेस्ट प्रबंधन का जो महत्व है वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या है। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, क्योंकि हो जाए थोड़ा मनोरंजन। भाई हमने जानकारी तो आपको दे ही दी, लेकिन जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी तो जरूरी है ना।

दोस्तों इसी के साथ दीजिए इजाजत, कार्यक्रम सुबह सवेरे अब यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वरांजलि।

कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम स्वरांजलि की शुरुआत करते हैं हंसराज हंस के गाए इस गीत के साथ।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
0: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
4: दोस्तों, संदेश से पहले आपने सुना हंसराज हंस को, और आइए कार्यक्रम स्वरांजलि में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं नेहा कक्कड़ और जुबीन नौटियाल की आवाज़ में।

दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम स्वरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनिए। इसमें रामलाल जी की शहनाई भी सुनाई पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि रामलाल ये गाना खुद गाना चाहते थे।

फिल्म सेहरा का सबसे प्रसिद्ध गाना है ये। आपको बता दें, इस गाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया है।

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत मिश्राई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगा। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कम वो लोग बाद में आए थे। टांगा वाला पीएस संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे टांगा वाला, राज कपूर वैजयंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से भूषण भानु बनी, वो गाना खरीद कर भूषण भानु बनाए प्रोड्यूसर।
2: गाना कौन सा था?
1: प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
0: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुन

गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने सी एच आत्मा से दो गाने गवाए थे। एक गाना था ये
1: मंद में तले हरी धुके दो फूल खिल रहे हैं,
0: और सी एच आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये
1: एक पल जो मिला है तुझको जीने के।
0: दिलचस्प बात यह है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये गाना।

0: लेखक और संगीतकार रामलाल जी का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनमोल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ।
1: नहीं मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिसे में पैसा रहता था। हमारे जब जगह दूसरा राज्य में होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर।
0: 4 जुलाई 2004 बारिश के दिन संगीत की दुनिया का ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी ना छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुने तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह ने की।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

दोस्तों आज का कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र लेकर हाजिर हूं मैं महक, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हर दिन हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातचीत, उन्हें सुनवाते हैं उनके पसंदीदा गीत और इसी के साथ साथ देते हैं आपको जानकारी भी, और आपको सुनवाएंगे गीत भी, आपको जानकारी भी देंगे, हम अपने श्रोताओं से बातचीत भी करेंगे। और तब तक के लिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत जब तक हमारे श्रोता हमें फ़ोन मिलाते हैं। और दोस्तों हमारे केंद्र का जो नंबर है वो तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं आप जानते जो हमारे नए श्रोता जो कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हम एक बार फिर से बता देते हैं। हमारे केंद्र का नंबर है 221322 और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744। और अभी के लिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: मैं राकेश कुमार बोल रही हूँ, मलेरकोटला पंजाब से। जी
0: हाँ जी, राकेश कुमार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: आवाज कट आ रही है?
0: जी अभी आ रही है आपके पास आवाज?
1: हाँ जी,
0: ठीक।
1: हाँ आ रही है। हाँ जी
0: हाँ जी
1: हाँ जी, क्यों भाई, सरगम का सुना रहे हो?
0: हाँ जी बताइए, कौन कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप सरगम फिल्म से?
1: हाँ जी,
0: जी गीत की बोल बताइए, आप सरगम फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: डफली वाले, डफली भैया।
0: अच्छा जी, तो क्या आप इस गीत को गुनगुनाना भी चाहेंगे?
1: ठीक रहे तब गुनगुनाएंगे जी।
0: अच्छा जी, तो हम आपको गीत सुनवा दें।
1: आगी, आगी।
0: जी क्या करते हैं राकेश कुमार जी?

0: हेलो हेलो हेलो।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार। कौन से श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: गुजरात से मैं धीरज व्यापारी बात कर रहा हूँ। आप कैसे
0: जी धीरज व्यापारी जी, कैसे
1: हो?
0: हैं?
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप धीरज जी?
1: मैं अच्छा हूँ और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार और आप सकुशल होगी।
0: जी हाँ, हम सभी सकुशल हैं।
1: जी
0: जी धीरज वीरवारी जी, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि बच्चों में जो कुपोषण की समस्या होती है ना, वो बहुत गंभीर है, और ये क्यों होती है, किस तरह से हम कम कर सकते हैं, हम इस बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी भी देंगे अभी कार्यक्रम में। तो आप इस पर श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हैं, कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं?
1: मैं इस बारे में यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पहले से माता का स्तनपान करना चाहिए और ये ज्यादातर जिम्मेदारी माँ की बनती है। और इसके बाद जो भी हमें डॉक्टर है, हमें जो बुजुर्ग है, उसको बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या कौन सा आहार देना चाहिए, वही वो आगे जाके वो बच्चों को अपनी सेहत के लिए बहुत काम में लगेगा। दीदी तो
0: हाँ जी
1: कुपोषण से कई बच्चे पिलाते तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें उसको पोषणतम आहार देना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बच्चों के आहार के प्रति हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का आहार जो है वो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ जी, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप धीरज जी?
1: गाना सुनना है पंख होती तो उड़ाते थे, सहरा फिल्म का गाया लता जी ने।
0: जी, तो आप सुनना चाह रहे हैं सहरा फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत, और आपकी फरमाइश को हम कर रहे हैं पूरा, तो
1: जी
0: आपको
1: धन्यवाद
0: सुनवाते हैं ये
1: धन्यवाद।
0: गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: हीराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी, नहीं
0: अच्छा, भगवान सिंह परमार जी, क्या आपका पहली बार फोन लगाया हमारे कार्यक्रम
1: नहीं
0: में?
1: दीदी, मैं तो आपके कार्यक्रम में लगाता रहता हूँ। पहले एक एक महीने का अंतराल से लगाता था दीदी, इस बार हमने 15 दिन का अंतराल से लगाया है
0: अच्छा जी, तो आप इस
1: और
0: बात
1: ढाई
0: का
1: साल से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ दीदी।
0: जी आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूसरे श्रोताओं को भी समय मिलता रहे, है ना?
1: जी हाँ दीदी, 15 दिन से पहले तो हम नहीं लगाते दीदी कभी भी, जो
0: अच्छा जी,
1: तारीख लिख के रखते हैं दीदी, जैसे आज लगाए तो आज की तारीख लिख लेंगे, इसके 15 दिन बाद लगाएंगे दीदी।
0: अच्छा जी, और एक कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं नमस्ते कुरुक्षेत्र के अलावा?
1: जी हम नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनते हैं दीदी, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, और शाम को आता है ना लाइव कार्यक्रम संडे के दिन,
0: अच्छा जी
1: उसको भी सुनते हैं दीदी।
0: जी फरमाइशी कार्यक्रम ज्यादा पसंद है
1: जी,
0: आपको?
1: फरमाइश कार्यक्रम सभी आकाशवाणी पर जुड़ते हैं दीदी हम।
0: अच्छा जी, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे फिर आज कार्यक्रम में?
1: दीदी फिल्म का नाम है खुद्दार और गाने के बोल है तुमसा कोई प्यारा मासूम नहीं है।
0: जी, और आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: जी

दोस्तों आइए कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं कि बच्चों में कुपोषण जैसी गंभीर समस्या का क्या कारण है, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है। दोस्तों बच्चे जो हैं वो किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास उनके पोषण पर, उनके आहार पर निर्भर करता है। उन्हें किस तरह का हम आहार दे रहे हैं, क्या वो खाना खा रहे हैं।

है, कैसा उन्हें भोजन दिया जा रहा है। दोस्तों जब बच्चों को उनकी आयु और उनकी ज़रूरत के अनुसार संतुलित भोजन नहीं मिल पाता तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और ये सिर्फ स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी गंभीर चुनौती है। क्योंकि जब बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, जितनी उनकी ज़रूरत है उसके अनुसार उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, तो वो कुपोषण के शिकार होंगे, तो उससे उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही, और उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ साथ हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी रुक सकता है। तो दोस्तों कुपोषण की जो कारण है वो क्यों हो सकते हैं कि जब उन्हें संतुलित आहार नहीं दिया जाता, यानी संतुलित आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जैसे कि भोजन में वो भोजन तो ले रहे हैं लेकिन उस भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और खनिज नहीं है, या फिर ऐसा है कि आर्थिक तंगी के कारण पौष्टिक भोजन उस किसी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, या दूषित पानी और अस्वच्छ पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से अगर बच्चे को पर्याप्त आहार या संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में बच्चे की जो लंबाई और वजन है वो अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाता है, शारीरिक और उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे कि बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है। इसी के साथ साथ जब बच्चा पढ़ने लगता है तो उसकी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बन पाती, और इसी वजह से उसकी जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों इस बीमारी मतलब इस गंभीर समस्या से अगर हम बचना चाहते हैं, हमारे आसपास यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, तो हम उन्हें ऐसा भोजन दे सकते हैं जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हों, मौसमी फल हों, अनाज हो, बाजरा हो, मतलब सभी तरीके के पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हो। और इसी के साथ साथ ऐसा किया जा सकता है कि बच्चों का जो वजन और लंबाई है उसको समय समय पर जांच किया जा सकता है, बच्चों का जो टीकाकरण है वो सही समय पर करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं और बच्चों में जो कुपोषण होने की समस्या है उसे रोका जा सकता है, उस ओर ध्यान दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बच्चों में किस तरह से कुपोषण की जो गंभीर समस्या है वो आ जाती है, तो इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और आइए अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: महेंद्र सिंह जी,
0: जी महेंद्र शाह जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया बात।

0: जी
1: आज मुझे छोलर धर्मेंद्र दूसरी फिल्म में धर्मेंद्र की भट्टाचार्य और मोहम्मद रफी गीत

0: करना पड़े किसी तरह
1: जी। वो वाह बहुत खूब, जो आपने ये जो पंक्तियां भी कही। हेलो हेलो, हाँ जी, तो हम आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं शोला और शबनम फिल्म से गीत
0: गॉड ब्लेस इंडिया
1: जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अनमोल है। इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
1: 8708903436।
2: दोस्तों आइए अब कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और उसके महत्व के बारे में। दोस्तों हमारा देश भारत जो है वो भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से विविधता वाला देश है। यहाँ पर भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और सूखा जैसी आपदाएं जो है वो किसी भी समय पर आ सकती हैं, जैसे कि

की भौगोलिक स्थिति है और इन आपदाओं से जनधन की हानि को कम करने और प्रभावी ढंग से इससे राहत पाने के लिए सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया है। यह अधिनियम 23 दिसंबर 2005 से प्रभावी हुआ और इसने देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक संगठित और संस्थागत व्यवस्था की स्थापित की। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये आपदाओं की रोकथाम के लिए, उनकी तैयारी के लिए, उनके जोखिम को कम करने के लिए, उनसे राहत के लिए, उनसे बचाव के लिए और उसके और किसी भी आपदा के बाद होने वाले जो नुकसान है उसमें चीज़ों के पुनर्निर्माण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दोस्तों इसका उद्देश्य ना सिर्फ आपदा आने के बाद राहत पहुंचाना है बल्कि पहले से ही तैयारी करके नुकसान को कम से कम करना भी है। जो अधिनियम है वो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करता है। कोई भी जो आपदा जोखिम है उसे कम करने के लिए पहले से ही तैयारी और जागरूकता पर विशेष बल देता है और इसी के साथ साथ यदि कोई आपदा आ गई है तो आपदा के समय में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करता है। दोस्तों आपदाओं से होने वाली जनधन की हानि को कम करने में जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम मदद करता है और इसी के साथ साथ राहत और बचाव कार्यों को अधिक तेज और प्रभावी तरीके से बनाता है। और ये जो हमने अभी आपको जानकारी दी ये थी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है और इसका क्या महत्व है। और आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

हेलो हेलो हेलो हेलो जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में? हेलो श्रोता, हमारे पास अभी एक श्रोता की कॉल आई थी जिन्होंने सुनना चाहा है ये गीत, और अभी हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो उनकी पसंद पर आइए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी 3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।

लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़े ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बद्रा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बद्रा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। गिर रहे घूमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है। कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होते हैं जो पल पल अपना रंग रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना। तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार उषा खन्ना हैं। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम भी कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बहाना का गीत जारी बदरा बैरीजा। एक बेहद खूबसूरत और भावुक विरह गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रीतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने पिए के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग

0: मार्गरेटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रही हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना, पंडित भरत व्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अनमोल यादें।
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

रघुम भट न छेड़ जट जाने दो देर मुहे भैर देर मेरे थक समाज तो है आए ना लाज तो है दगा बाज धक धक धक धक धक धड़ के दिया थर थर थर थर थर कांप के दिया थर पत्त से किया हट जा हट जा हट जा।

पंचायत कोरी एक गांव की छोरी मैं नवल नवेली अलबेली नार समझाए तके तोहे बार बार मन छुई मुई करू कान जत

0: गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों के, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृह लक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, और ये फिल्म का नाम है

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारे ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? बेकरार हैं, है ना? चलिए तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना? लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों, जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में, जहाँ हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो। लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे जैसे कि गजल में कम से

0: कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है, है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है। इसका
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं छोड़ेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन से विश्वसनीय और स्थायी रूप से पीछे हटना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपॉक, आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी सूत्रों ने बताया कि इन ऐप्स को ऐप स्पोर्ट से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में 12 स्थानों पर ग्रामीण हाट एवं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए जगह की पहचान कर ली गई है। इनके लिए 30-35 लाख रुपए की लागत से शेड बनाए जाएंगे। इसके अलावा खंड स्तर पर भी खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन एवं किसान अपनी फसलों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। मंडी बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यमुनानगर, करनाल एवं नारनौल में कोल्ड स्टोरेज एवं पैक हाउस बनाए जाएंगे। इनके लिए टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक के एग्रो मॉल को उपयोग में लिया जाने लगा है। इसके अलावा करनाल, पानीपत और पंचकुला के एग्रो मॉल के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा पिंजौर की सेब मंडी के लिए भी जल्द ही टेंडर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम की सब्जी मंडी को शहर के भीड़ वाले स्थान से कालियावास की 22 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाने वाली फूल मंडी में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद की सब्जी मंडी को भी जल्द ही बाहर भेजा जाएगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश की 93 मंडियों में मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोली गई है तथा 10 अन्य मंडियों में भी जल्द यह कैंटीन खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में सही मापतोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें भी लगाई गई हैं और राज्य की 108 मंडियों का इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के साथ संपूर्ण एकीकरण किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडी बोर्ड द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें तय मानदंड के अनुसार बनाने और गुणवत्ता के मामलों में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भी सड़क टूटी नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में बजट घोषणा अनुसार ग्रामीण हाट एवं खरीद केंद्र बनाने, सड़कें बनाने तथा उनके रखरखाव, फसलों के गेट पास जारी करने, एग्रो मॉल, मंडियों में सफाई सफाई व्यवस्था, पैक हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज, अटल कैंटीन सुविधा और विजन 2047 आदि को लेकर विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी अनाज मंडियों में सफाई व्यवस्था की उचित व्यवस्था करने, मंडियों में नाले, शेड एवं खुली जगह

हमें भी सफाई करवाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मंडियों में सफाई को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने पात्र अनुबंध कर्मचारियों के सत्यापन और उन्हें सेवा सुरक्षा के तहत नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पत्र जारी करने के लिए 15 अगस्त तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहाँ महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफे आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यह गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसने रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खय्याम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूं। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने

अपनी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आप, आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी? बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको, आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी, कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें।

हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी की गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विदा की कसक है, दर्द की सच्चाई है और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल सीधे हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में एक गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट आकर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने। तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाएं, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वही एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से है वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबान होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत सी गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज की सुरीला सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और

गीत चली गायन चली यानी गजल जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल जिसे जादुई आवाज शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं और आपने बहुत गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गजल।

होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसी ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम अब आपके जो उत्तर है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आई, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज की आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ काफिया मिसरा गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूँ इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आई सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गार फिल्मी गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी जहां फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गजल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आ रहा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूँ। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गज़ल की शर्तों में आती है। ये गज़ल उस नियम, वो दायरा जो है गज़ल का, उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गज़ल। फिल्म का नाम गज़ल, आवाज़ लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूँगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आँखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियाँ, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूस किया। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफर को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी

0: मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन,

0: और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम।
2: जनता नर्सरी बनाई है तो उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
5: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लेखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोसले और मोहम्मद रफी हैं। शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी अपनी फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: मनचाही गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये है सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, हर्षेल रंभाड़े, वैष्णवी रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर।

यह आवाज थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफ अली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।

इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: दोस्तों, आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मदमाती ध्वनि।

0: नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
2: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए

ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा,
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: मालविका अब तू जा।
1: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
2: महाराज जी भर कर
3: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
4: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
0: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
1: महारानी मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
3: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
4: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
1: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
0: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
1: दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
0: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
3: जो आज्ञा।
1: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
4: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
1: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
0: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
4: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
0: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
1: ओह आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
2: महाराज अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
3: महाराज सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
0: मित्र सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
3: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
0: मित्र शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सकें।
3: महाराज कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
0: हमें घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रनिवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम सोचा कोई उपाय?
3: उपाय उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
0: हम उसे मालामाल कर देंगे।
3: बकुला वलिका समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
1: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
4: अरे मालविका तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी, पांव में क्या बहुत कष्ट है?
4: ओह, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है, आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए, उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती, अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
5: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
4: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
5: जो आज्ञा।
4: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
3: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। आ हा हा, देखो तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
0: हाँ हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ओ, ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं उतने ही कठोर होते हैं।
3: महाराज तुम्हें धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
3: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
3: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणिका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था

0: वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
1: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
2: अरे कैसी अचरज की बात है कि
1: क्या हुआ?
0: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
1: क्या क्या मालिका आ रही है?
2: और क्या,
1: तो सब जवाब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
0: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
1: आहा, ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
0: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज?
1: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
0: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
1: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
3: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ते तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है, ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। मुझे यूं सता कर तुझे क्या मिल रहा है?
1: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
0: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकला बलका उसके पास पहुंच गई।
1: अरे ये बकला बलका साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
0: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
1: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
2: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। ले सखी। हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो।
1: हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपले फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर।

0: पर नहीं हो क्या?
1: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
0: मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
2: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
3: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढें।
2: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
3: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमगुलता मंडप में बैठे।
2: अच्छा चल।
3: अरे ये क्या स्वामिनी?
2: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
3: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
2: अरे क्या कह रही है?
3: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
2: हैं? मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
3: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूप पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
2: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
3: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
2: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
4: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
2: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
4: सच सच कह दूं
5: ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
2: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
4: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलानी होगी तुम्हारे सुंदर चरण पाकर, आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
2: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया। आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर तो
4: ठीक।
2: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
4: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
2: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
4: मैं तुम्हें प्यारी हूँ, इसीलिए मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
2: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
4: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
2: हाँ क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
4: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
2: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
4: अरे पगली, भौरों के डर से कोई कानूनी आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दू।
2: लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
4: अरे क्या सोच रही हो?
2: सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
4: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
0: वाह बकुलावलिका वाह! मित्र बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालिका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
6: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल

0: पत्तों का गुच्छा कान में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
1: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
0: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। माँ लड़का, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
2: आई गौतम, महाराज भी
0: क्यों रही बकला वाली का? सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
2: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसमें धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी। महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
1: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
1: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसले कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
2: महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने। अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
1: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
3: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो

0: आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लिख रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
1: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी, वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: बिल्कुल।
1: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ। हाँ। और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
0: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर
1: की,
0: थी कि चुनरिया पर ही आपको
1: नहीं, नहीं। मैंने खुद लिखा, उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
0: आपस का
1: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ।
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था, और फुल तैयार बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा।
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं। तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया,

0: अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, अरे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं।
1: हाँ?
0: उसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था, उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है, आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंद्र जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंद्र जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंद्र जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में लाके दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं।
1: हाँ।
0: आए हैं,
1: भूख
0: लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत
0: खूब। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: और फर्स्ट शॉट उनका था, वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये बीजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार बीजू।
0: पहली बार मैं संगीतकार बीजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो बीजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं, क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लक्की शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन।
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है।
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा। मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वो ही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इस गाने की कहानी है।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना था
1: जी, और जगदीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना,
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया। उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं,
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है। मैं
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को क्रिएट कर रहे हैं,
1: लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस कर

0: हूँ, कान तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
1: बहुत बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना, तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है,
1: हाँ,
0: वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
0: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
1: हाँ,
0: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है,
1: हाँ,
0: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
1: वो लिख
0: उसको ले जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
1: अच्छा।
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
1: अच्छा।
0: हमने फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम, मैंने कहा लिखोगे अभी तो बाहर ही निकाल देंगे, मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया, मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
1: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल लिखवा
1: देते हैं, सिचुएशन बतानी पड़ती है या
0: हाँ जो भी सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में
0: मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने, हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी, अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं। इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है, वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली अच्छा, यहाँ पर भी चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र भी आप
1: जिक्र किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको

0: मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है वो है।
1: जी, जी।
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या?
1: हाँ।
0: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी। मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ? बोले मैं एक रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं एक रुपया नहीं लूंगा।
1: अद्भुत,
0: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं एक रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये एक रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है, जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया। हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या। हमने कहा आप शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता, कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो एक पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा।
1: हाँ, हाँ,
0: लेकिन मेरी औकात ही क्या, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
1: उनकी महानता देखिए आप,
0: लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं और जब भी वो आते हैं, बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना।
1: जी जी।
0: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: वाला। कुछ नहीं लेने
1: वाला। बहुत बड़ी बात सर।
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
0: एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: गाना नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला।
1: अरे
0: गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर, और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन बट एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोर्ड पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार, युवा गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं बतौर गीत

0: गीतकार बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
0: वो कालजयी हो गया।
1: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
0: जी, जी।
1: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
0: जी,
1: देखिए आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास, वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल। मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं, उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
0: बिल्कुल।
1: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए, काम कीजिए, हैव पेशेंस। काम आज नहीं, कल नहीं, परसों, साल, 2 साल। मुझे पहली कामयाबी, मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया, ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
0: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
1: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया।
0: दूसरे गाने का?
1: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
0: patience.
1: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है
0: जी।
1: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ।
0: अच्छा।
1: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 350-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है, और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और बोलता है अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूँ, तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ, तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ। अंदर गया, बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ ना कुछ
0: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
1: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक

0: ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
1: जी।
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सबसे मैं मिला हूँ
1: जी। और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बजते हैं, अब से लेके रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम। और लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, शाम 5:05 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने, और 5:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। शाम 5:30 पर युवा दोस्त सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

श्री श्यामलाल चूड़ामणि से आज सुनिएगा गीता संदेश में अध्याय 8 से श्लोक 1 से 4 की व्याख्या। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे शाम 6:30 पर, और गांव देहात और खेत खलिहानों पर आधारित हमारा कार्यक्रम ग्राम संसार शाम ठीक 7 बजे से।

फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7:30 से। और श्रोता दोस्तों, गैर फिल्मी रचनाओं के कार्यक्रम गुलदस्ता का आप आनंद ले पाएंगे शाम 7:45 से।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत रात्रि 8 बजे से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें होगा रात्रि 10 बजे से। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित आपके पसंदीदा फिल्मी नगमे इस कार्यक्रम में आपकी नज़र किए जाएंगे और आप सभी के नाम भी साझा किए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से आज रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए, और इसके ठीक पश्चात 9:30 दूसरा फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा। समाचारों के समय आज की शाम की सभा में इस प्रकार से रहेंगे। हिंदी में समाचार शाम ठीक 6 बजे, समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, और समाचार हिंदी में रात्रि ठीक 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार शाम 6:05 पर, रात्रि ठीक 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 6:10 पर। तो ये थी आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम वही रूपरेखा FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे आपकी नज़र, तो आइए आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोता दोस्तों, प्रियतमा फिल्म में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अनजान का और धुन राजेश रोशन की।

श्रोताओ, आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां आप सुनेंगे ठीक अभी प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, और फिल्म संगीत इसके बाद जारी रहेगा।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए
2: जी।
3: और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
2: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे।

0: और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ। जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
1: तो ये कब शुरुआत की आपने?
0: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना है, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारे स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री जाल लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर सुनोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में ही।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का

0: फुल सपोर्ट मिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है। चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी है। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरह बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर तो है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि, अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था, और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना, और हजारों की संख्या में गांव वासी, माताएं, बहनें, युवा साथी एक बढ़ चढ़कर भाग लिया, और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले, और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है, हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में

0: शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को ही बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ, इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे, या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे और एक छोटी घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है, और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं, पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूं विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं, आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें, तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉल्यूशन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गाँव में जाते हैं, गाँव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी, अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैला प्रयोग करते थे, और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला,
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर है हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई, और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी तो गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है

0: और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन का जो करने वाली चीजें है वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
1: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर चार जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
0: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
1: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
0: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
1: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती है, पेड़ लगाता है, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
0: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
1: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
0: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
1: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
0: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
1: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
0: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
0: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
1: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
0: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाए वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
1: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देखरेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
0: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
1: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और

0: इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया। उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का कर्नाटक से हैं जो, वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया। मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़ा प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast@airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, अभी ये कार्यक्रम हम आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 होते हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। युवा शक्ति के लिए ये कार्यक्रम हम विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं और युवा शक्ति नाम होती है होश का और जोश का। होश और जोश का जो संगम हमें देखने को मिलता है वो नौजवानों के अंदर मिलता है और नौजवान किसी भी देश का किसी भी समाज का सबसे बड़ा वह रूप होता है जिसे हम उस समाज या उस राष्ट्र की ताकत के रूप में पहचानते हैं स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों जिस देश के नौजवान जुझारू हैं समझदार हैं होशियार हैं और आलस से दूर हैं ऐसा राष्ट्र हमेशा आगे रहता है तरक्की करता है और पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। जहां तक नौजवान की बात है तो भारत एक नौजवानों का देश माना जाता है। उसका सीधा सा कारण यही है कि भारत

0: की आबादी आधे से ज़्यादा नौजवानों के है और इसीलिए भारत को एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। तो दोस्तों, आपके लिए कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे और कुछ आवश्यक जानकारियाँ। आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन।
1: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
2: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
4: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
3: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
4: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
4: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
3: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
4: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
3: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
4: 8708903436।

राजपूत फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज थी किशोर कुमार की। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 6:10 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगल में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य

0: बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम का ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा के कई गांवों में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भारत के समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कई देश ईंधन की कमी से जूझ रहे थे, वहीं भारत ने संकट का सटीक आकलन किया, एक प्रभावी रणनीति तैयार की और देश की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी राजनयिक शक्ति का इस्तेमाल किया। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जल संकट के समाधान पर श्री मोदी ने कहा कि लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावाटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों में इस बारे समझौते पर मोहर लग चुकी है।
1: इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किशाऊ बांधों का निर्माण पड़ा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वर्तमान में रक्षा निर्यात लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
1: मेक इन इंडिया आज सफलता के नए कीर्तिमान बना रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले केवल 18,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की थी, जो आज 28 गुना बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मोबाइल एक्सपोर्ट तो करीब 163 गुना बढ़कर 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, 2014 तक भारत 50,000 करोड़ के आसपास के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता, आज भारत एक साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट शुरू किया है। वर्ष 2026 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 8-9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन केवल 46,000 करोड़।
0: रक्षा मंत्री ने भारत की व्यापक विनिर्माण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भी भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है।
1: आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने स्वदेशी हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार दुनिया में इस इंजन को ब्रॉड गेज ट्रैक पर सफलतापूर्वक संचालित करने का कीर्तिमान भी भारत ने ही स्थापित किया है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में प्रतिष्ठित पेशेवर कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन प्रज्ञान 2026 को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज भारत की दुनिया में वो पहचान बनी है जो गत 55 वर्ष में नहीं बनी।
2: युवा साथियों, 2014 से लेकर के आज 2026 जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का विजन एक एक कदम ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है। प्रधानमंत्री जी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कार्यक्रम में आए थे, एक बात कही थी, आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है, प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा, आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है।
0: उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने, हर एक हस्ताक्षर देश के निर्माण के लिए करने का और विकसित भारत के सबसे मजबूत सिपाही बनने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में हर महीने रिकॉर्ड जीएसटी संग्रहण हो रहा है, जो देश की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। कर व्यवस्था को मजबूत बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के विवेक और निर्णय क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकती। तकनीक से डरना नहीं है, बल्कि तकनीक को अपना हथियार बनाना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के गांव खेड़ी, दबदलान, घलोड़ी और भालड़ में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी। मुख्य समस्याएं बिजली के कट व गांव के रास्तों को लेकर थीं। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उनके साथ हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही, प्रमाणिक एवं अद्यतन रूप से दर्ज करना है, ताकि लोकतंत्र की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। वे हिसार में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है।
3: देखिए, SIR में सारे के सारे वोटर अभी नए बनने हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने वोट फार्म फिल करके चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वो जो BLO जो घर घर दे रहे फार्म, वो भर करके अपने वोट नए वोट बनवाने का काम करें।

0: SIR जो है इसमें कोई भी फर्जी वोट है वो काटे जाते हैं, नए वोट है वो बनाए जाते हैं, और जिन घुसपैठियों के जो वोट बन गए हैं वो वोट भी उसमें काटे जाएंगे।
1: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बरवाला में संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के नाम पर एक चौक का निर्माण किए जाने की घोषणा की है। वे आज हिसार के बरवाला में संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मना रही है। इन आयोजनों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को अपने संतों और महापुरुषों के जीवन, संघर्ष, त्याग और उनके महान विचारों से प्रेरणा मिलती है। मंत्री ने कहा कि संत कबीरदास जी केवल एक संत ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, महान चिंतक और मानवता के सच्चे उपासक थे। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी चंडीगढ़ सहित कई जगह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत मिली। मॉनसून के आगमन के बाद हुई वर्षा से अधिकतम तापमान में ही गिरावट दर्ज नहीं हुई। किसानों को भी फसल की बुवाई में लाभ मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा के कई गाँवों में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ लीजिए सुनिए श्री श्यामलाल चूड़ामणि से आज का गीता संदेश। आज आप सुनेंगे अध्याय 8 से श्लोक 1 से 4 की व्याख्या।
1: श्रोताओ नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज से हम गीता के 8वें अध्याय की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं, जो कि अक्षर ब्रह्म योग नाम से है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म अर्थात कर्म जो कि आराधना है, उसे करने वाले योगी सभी पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जान जाते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाला व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और यज्ञ सहित मुझको जानता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वे अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का उल्लेख किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण और अर्जुन के श्रीमद् भगवद गीता के इस 8वें अध्याय के अक्षर ब्रह्म योग संवाद में अर्जुन प्रश्न दोहराते हैं। अर्जुन उवाच, किम तद् ब्रह्म, किम ध्यातम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहा जाता है? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति, योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भगवद में कहा गया है, परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान

के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीव या जीवात्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा और मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कह के संबोधित किया है, जिसका अर्थ हुआ कि वो सारे प्रश्न अपने मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से पूछ रहा है, जो निश्चित उन्हें उत्तर दे सकते थे। अधियज्ञ कथम कह अत्र देहे असिमिन मधुसूदन, प्रयाण काल च कथम ज्ञेय असि नियत आत्मभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है? साफ है, यज्ञ करने वाला कोई ऐसा पुरुष है जो शरीरधारी है, जिनका हृदय आप में समा चुका है। अंत समय कैसे आप उनके जानने में आते हैं? अर्जुन भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। उन्हें मधुसूदन कहना इसलिए भी उपयुक्त है ताकि वो मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इसमें प्रयाण काले शब्द भी महत्वपूर्ण है। जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय ही होती है। अर्जुन जानना चाहता था, जो भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं उनका अंतिम काल कैसा होता है? तब शरीर के सभी कार्य रुक जाते हैं और मन भी स्थिर नहीं होता। अर्जुन तब जानना चाहता है, ऐसे में जीव कैसे अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के रख सकता है। श्री भगवानुवाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करह विसर्ग कर्म संगीता। अक्षय ही पर ब्रह्म है, अपने आप में स्थिर होने का भाव अध्यात्म है। भूतों के भाव कुछ न कुछ उद्भव करते रहते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं मतलब जिसका नाश नहीं, वही पर ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, अपने आप में स्थिर होने का भाव ही अध्यात्म है, अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप या स्वयं में स्थित भाव मिल जाता है तो आत्मा का आधिपत्य ही उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। योगेश्वर ने कहा, वह संपूर्ण कर्म को जानता है, वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं। इस अवस्था में भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की रचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है जिसके लिए योगेश्वर ने कहा, वह संपूर्ण कर्म को जानता है, वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। अधिभूतम क्षरोभावः पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहभृताम वर। सभी क्षर भाव अधिभूत हैं, प्रकृति से परे परम पुरुष अधिदैव है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मानव तन में मैं अधियज्ञ हूँ। जब तक अक्षय भाव नहीं मिल जाता, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान हैं, वही भूतों की उत्पत्ति के कारण हैं। पुरुषः च अधिदैवतम, प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों या दैवी संपद का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में लीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। जो महापुरुष यज्ञ को पूर्ण कर लेता है और यज्ञ से प्राप्त उस ब्रह्म के अनुरूप स्थिति वाला है, वो अधियज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोगता है।

0: में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस श्लोक में एक शब्द उल्लेखनीय है, क्योंकि भगवान इसमें बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं, परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास है, वो आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है और आत्मा की चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर नजर रखता है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने गीता के 8वें अध्याय के पहले 4 श्लोकों की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर श्यामलाल चुड़ामणि की थी।

हम अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकेंगे शाम 7:45 से, और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत रात्रि ठीक 8 बजे से। इस कार्यक्रम में एक भेंटवार्ता विषय रहेगा चुनाव में सावधानियां। वार्ताकार होंगी डॉक्टर संगीता शर्मा, प्रिंसिपल कन्या महाविद्यालय ढांड, जिला कैथल में, और इसके साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 अब होने को हैं। किसान भाई अब सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मरवाल की राम राम। बहन और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी हम महत्वपूर्ण विषयों को जरूर लेकर आते हैं, जिससे हमारी जो खेती बाड़ी है या हमारे जो सहायक धंधे हैं और हमारा जो पशुधन है वो बरकरार रहे और हमेशा अग्रिम पंक्ति में हम रहकर देश को नंबर वन बनावाएं। तो साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी में हम महत्वपूर्ण विषय को लेकर आते हैं और आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है भाई, जो चर्चा हम करेंगे, बाजरे की पैदावार कैसे बढ़ाए। इसी तरह भाई चर्चा हमारी एकीकृत 100 ग्राम योजना के बारे में भी है और आज की नसीहत में

0: हम जो विषय लेकर आए हैं, चारे की कमी के समय पशु आहार कैसा हो, और जानकारी देंगे भाई गन्ना फसल में कीट नियंत्रण व अन्य देखभाल। लेकिन भाई कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं, और आज का कृषि प्रश्न है, हरियाणा का एकमात्र सरकारी हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है? भाई जगह का नाम आपने बताना है। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा का एकमात्र सरकारी हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है, और इसकी आप जानकारी साथियों, इसका सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 9460216336 पर आप हमारे को SMS या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से इसका सही उत्तर दे सकते हैं 6:50 से पहले। प्रश्न भाई, हरियाणा का एकमात्र सरकारी हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है? और अब बातचीत साथियों, हमने एक महत्वपूर्ण आज जरूर करी, और हमारी कोशिश रहती है भाई जो विशेषज्ञ है उनसे महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके साथ वो बातचीत साझा करें। ऐसी हमने आज एक बातचीत करी, और कृषि में फसल विविधीकरण का महत्व विषय पर डॉक्टर संदीप रावल, जो जिला विस्तार विशेषज्ञ सस्य विज्ञान कृषि केंद्र यमुनानगर में स्थित कार्यरत हैं, और इनसे हमने बातचीत करी थी। तो बातचीत के अंत सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में।
1: नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप रावल जी जुड़े हैं, जो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र यमुनानगर में कार्यरत हैं, जिला विस्तार विशेषज्ञ है। तो आज इनसे बात करते हैं कृषि में फसल विविधीकरण के महत्व के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कृषि में फसल विविधीकरण की हम बात करते हैं, ये विविधीकरण क्या चीज है फसल में?
2: देखिए विनोद जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे अधिकांश किसान जो हैं आज भी परंपरागत रूप से कुछ सीमित फसलों पर ही निर्भर हैं।
1: जी
2: वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन है, भूजल स्तर में गिरावट है, मिट्टी की उर्वरता में कमी है, तथा उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि जैसी चुनौतियों के कारण जो फसल विविधीकरण की आवश्यकता पहले से काफी अधिक है। इसका मतलब क्या है? फसल विविधीकरण का अर्थ है कि किसान एक ही प्रकार की फसल पर निर्भर रहने की बजाय अपनी
1: जी
2: भूमि, जलवायु तथा बाजार की मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलें अपनाएं। उदाहरण के तौर पे जैसे धान गेहूं फसल के चक्र के साथ इसमें समावेश किया जा सकता है दलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों का, सब्जियों का, चारे वाली फसलों का। इसके अलावा फल और जो औषधीय पौधे हैं इन फसलों को भी शामिल किया जा सकता है।
1: जी
2: तो मुख्यतः अगर हम कहें कि भाई एक ही फसल के अलावा अगर हम विभिन्न फसलों का समावेश करते हैं तो उसको फसल विविधीकरण बोला जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे फसल विविधीकरण आपने बताया, तो इसका महत्व किस प्रकार से बनता है?
2: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि किसान की आय के स्रोत बढ़ते हैं। यदि किसी कारणवश एक फसल में नुकसान हो जाए तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई की जा सकती है। इससे खेती का जो जोखिम है वो कम होता है, तथा जो किसान की अगर आर्थिक आय की बात करें, स्थिति की बात करें, वो भी अधिक मजबूत बनती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ की अगर बात करें तो वो है मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार। जैसा
1: जी
2: किसान भाई जानते हैं कि लगातार एक ही फसल लेने से मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनका असंतुलन जो है वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि फसल चक्र में दलहनी फसलें शामिल की जाए उदाहरण के तौर पे, तो ये जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन काफी मात्रा में रहता है उसको मिट्टी में स्थिर करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तथा हमारे जो रासायनिक उर्वरक के जो किसान भाई प्रयोग करते हैं उसकी भी आवश्यकता कम हो सकती है। दूसरा संकट जो अभी हमारे पास है वो है भूजल संरक्षण।
1: जी
2: जैसे जानते हैं इस साल की अगर हम बात करें तो अलनीनो के कारण इस साल बारिश कम होने की आशंका है, और अगर जब हरियाणा राज्य की बात करते हैं, धान खेत जैसे धान की खेती है उसमें अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो
1: जी
2: ऐसे
1: पानी ज्यादा
2: क्षेत्रों में
1: लगता है।
2: अगर हम जैसे मक्का है, बाजरा है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, जो कम पानी में

0: हम अच्छी उपज इसमें ले सकते हैं। तो इससे प्रकृति संसाधनों का भी संरक्षण होता है और खेती भी अधिक टिकाऊ बनती है। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे विविधीकरण करते हैं तो इससे कीट और जो रोग है उसका प्रकोप भी कम होता
1: एक फसल बोने से कीट प्रबंधन कीट ज्यादा
0: है।
1: होते हैं, मतलब एक फसल बोने से।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे एक ही फसल रहती है तो उनको अपना जैसे आक्रमण करने के लिए अपना स्रोत मिलता रहता है, तो वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं,
1: जी
0: तो वो स्थायी रूप से बने रहते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन करते हैं तो उनका जीवन चक्र प्रभावित हो जाता है, जिससे एक तो उनकी कमी आती है, दूसरा किसान की लागत भी घटती है, कि जैसे रासायनिक जो प्रयोग कर रहा है, रसायनों का जो प्रयोग कर रहा है उस पर भी निर्भरता घटती है। इसके अलावा एक और भी है कि किसान को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बाजार की मांग के अनुसार अगर वो चयन करता है अपनी फसल का, उसमें जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, मसाले वाली फसलें हैं, फूल हैं, बीज उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी अपनाकर वो कम क्षेत्र से अधिक उपज ले सकता है।
1: ना प्राप्त
0: इसके
1: ज्यादा कर
0: साथ साथ
1: लेते हैं।
0: जी, इसके साथ विविधीकरण में हम जो अन्य कृषि जो हमारे व्यवसाय हैं, जो पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मशरूम उत्पादन हो गया, या मत्स्य पालन का भी जैसे अभी ट्रेंड बढ़ा है, तो ये सारे कृषि गतिविधियों को भी जोड़कर आय में अधिक वृद्धि की जा सकती है। ये भी कृषि विविधीकरण का ही पार्ट रहता है। इसके अलावा जैसे अगर हम एक और जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है वो है संसाधन संरक्षण, तो
1: जी
0: इनमें भी जो हमारी फसल विविधीकरण के साथ साथ जो हमारा बोने का तरीका है उसमें भी अगर विविधीकरण करते हैं तो वो भी एक तरीके से हमारे संसाधन बचाने में काफी सहायता करता है। जैसे मान लो अभी धान की बिजाई चल रही है, रोपाई चल रही है, तो इसमें भी कुछ किसान जैसे अगर धान की सीधी बिजाई पे जाते हैं तो पानी की बचत के साथ साथ और जो लेबर की बचत है उससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य फसल जैसे मैंने पहले भी बताया कि मूंग है, उड़द है, मक्का है, तो ऐसी फसलें जो मान लो जिन खेतों में ऊंचे खेत हैं, पानी नहीं भरता है, तो वहां पे इन किस्मों का भी चयन किया जा सकता है, जिससे संसाधन संरक्षण भी होंगे और हमारा जो अधिक आय भी किसान भाई ले सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने विविधीकरण के लाभ भी बताए, भाई पानी की भी है, मिट्टी की भी जो सही बनी रहती है, उर्वरा शक्ति, कीट प्रबंध भी हो सकता है, और आर्थिक तौर पे भी प्रगतिशील किसान बहन भाई है वे भी मजबूत होते हैं। तो
0: जी।
1: जैसे फसल विविधीकरण की जैसे आपने बातचीत ये पूरी जानकारी दी, भाई जो क्या बागवानी विभाग है या मत्स्य विभाग है, जो अगर जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई इस तरफ भी जाते हैं, इसको करते हैं, तो सरकार से भी सब्सिडी या अन्य कुछ लाभ भी मिलता है इसमें?
0: हाँ बिल्कुल है, देखिए सरकार का भी इसी तरफ जोर है कि विविधीकरण को अपनाया जाए। और जैसे मशरूम के लिए है, कोई किसान अगर आगे आता है तो उसमें अगर कोई अपनी यूनिट लगाता है तो उसमें भी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इस तरीके की काफी स्कीम है, जो मैं तो यही अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि किसान भाइयों से कि वो अपने निकटतम जो कृषि अधिकारी है, मत्स्य पालन अधिकारी है
1: या
0: या डेयरी
1: बागवानी क्षेत्र के
0: उत्पाद
1: हो
0: है,
1: गए,
0: उनसे संपर्क करके इन स्कीम का लाभ भी उठाए और अपने खेत की जो स्वास्थ्य है उसको भी बरकरार रखे और अपनी आय में भी वृद्धि करें।
1: तो डॉक्टर साहब अंत में हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके लिए कुछ सुझाव या कुछ महत्वपूर्ण बातचीत जो आप देना चाहें?
0: देखिए मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि प्रिय किसान भाइयों, जो भविष्य की खेती वही होगी जो लाभदायक होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करे। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हम परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक सोच को अपनाएं और जो फसल विविधीकरण है उसको भी अपनी कृषि का अभिन्न हिस्सा बनाएं। इससे न केवल आप लोगों की आय बढ़ेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: तो ठीक है, कार्यक्रम में बने आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों भाइयों, ये बातचीत हम न करी कृषि में फसल विविधीकरण का महत्व विषय पर डॉक्टर संदीप रावल, जो जिला विस्तार विशेषज्ञ है शस्य विज्ञान कृषि केंद्र यमुनानगर में। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। और ये देखिए भाई, कृषि केंद्र जिस तरह परंपरागत जो हम खेती करते आ रहे उसके अलावा

0: बताओ कि बाजरा जो अधिक पैदावार, तो थोड़ा सा बाजरे के बारे में बताओ पहले तो।
1: तो विनोद भाई, बाजरे के बारे में किसान तक बतावा, जो बाजरा है भारत में जो फसल उगाई जावे, जो चार प्रमुख फसल है, मुख्य फसल है, उनमें जो बाजरा है वो भी एक प्रमुख फसल मानी जाए।
0: अच्छा।
1: और जो ये बाजरा है, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में जो है खूब मात्रा में उगाया जाए। और अगर पूरे संसार की बात करें ना, पूरे विश्व की अगर बात करें,
0: अच्छा,
1: तो उसका जो 42% हिस्सा है वो भारत में उगाया जावे।
0: अच्छा, 42% केवल भारत में,
1: 42% केवल भारत में उगाया जावे
0: जी।
1: और इसका प्रयोग की बात करें तो बाजरा की चपाती बन जाए, बाजरे की खिचड़ी बन जाए,
0: तो घर तो बनवाई होगी ना, खाते तो होगी।
1: देखो सर्दियों में तो डेली बना है।
0: अच्छा।
1: और गर्मियों में कोई एक बार प्रयोग कर ही ले, लेकिन जाड्य में जो है बाजरा एक अच्छा आहार माना जावे।
0: तो फिर सुविंदर भाई, देखो जो बाजरे की आपने बात बताई, देखो हरियाणा में पूरे विश्व के अंदर 42% हिस्सा केवल भारत में उगाया जाता है। और जब इस हिस्से की हम बात करते, तो साथियों देखो बाजरे का ध्यान रखेंगे, शस्यक्रियाएं जो करेंगे और रोगरोधी किस्मों के प्रचलन से यो संभव हो पाओगा कि इसकी अच्छी पैदावार हम ले सकें। और इसकी जो उन्नत किस्मों के चुनाव की भी बात जरूर कर लेते हैं। तो भाई इसमें जो चुनाव करते समय तो कुछ बात है वो ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो एक तो भाई, जिन क्षेत्रों में बाजरे की खेती केवल वर्षा पर निर्भर हल्की रेतीली दोमट मिट्टी है, वहाँ पर मुख्यतः HB67 जो संशोधित HB197 व HB68 संकर किस्में ही इसमें लगा हुआ। और इसी तरह जो भाई जहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता है वहाँ पर जमीन उपजाऊ, तो वहाँ पर HHB94, HHB117, HB146 या फिर HHB197 का इसमें प्रयोग करें। और भाई मुख्य जो शस्यक्रिया है उसकी अगर जो हम बात करें, तो भाई जड़ा सिंचाई की कोर संसाधनों की उपलब्धता की कमी हो, वहाँ पर भाई पौधों की संख्या 70,000 से 80,000 पौधे एकड़ उत्तीर्ण चाहिए, जो कि 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन व 12 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी इसमें हमने प्राप्त करते हैं। तो भाई जो सुविंदर जी भाई, इसमें जो रोग व उपचार की बात करें, तो
1: विनोद भाई अगर रोग की बात करें तो बाजरे में जो है चेप रोग आने की जो है संभावना रह सके।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो चेप रोग है जो मिट्टी है, जो टसरी ने बोलते हैं बाजरे की, उन टसरी में एक शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लग जाए और जो उसकी संरचना है वो भूरी सी बनने लग जाए, तो उसमें वो चेपे के पिंड होगा वो, तो उन तक छुटकारा चाहिए तो क्या करना पड़े, जो बीज है उसमें 10% नमक के गोल में वो टसरी जो है वो डुबो दे।
0: अच्छा।
1: और जी वो चेप ऊपर तैरने लग जाए तो उसने अलग कर दें, तो इस तरह हम जो है बाजरे ना दो का सुखा लें। और साथ ही अगर बात करें तो बीज को जो है 2 ग्राम एमिसोन और 4 ग्राम थायराम ये प्रति किलो जो है बाजरे के साथ जो उपचार करें, तो इस तरह हम जो है उससे छुटकारा पा सके रोग से।
0: और भैया गेती बुआई करने से भी ये रोग नहीं लगता। इसी तरह भाई जो डाउनी मिल्ड्रू रोग की भी बात कर रही थी, इस रोग के लक्षण पत्तियों और भाई बालियों पर मिलते हैं, तो बीमारी जमते ही पौधे पर आने जो बीमारी आने लग जाती है, तो पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा इसकी जो निचली सतह पर फफूंद की कपास जैसी वृद्धि इसमें दिखाई देती है। तो भाई देखो हरे रंग की पत्तियां की तरह गुच्छों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके उपचार के लिए भाई जो हमने बातचीत करी भाई, एक तो देखो इसमें किस्मों जिसमें HHB94, HHB146, HHB67 संशोधित है, जो HHB197 और HC10 व HC20 का इसमें प्रयोग करें। बीज का जा मेटा स्किल दवा द्वारा 2 ग्राम सक्रिय तत्व किलोग्राम या फिर बीज के हिसाब से उपचारित करें, और बाद में रोग आने पर इसकी दवा द्वारा 125 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें और प्रभावित पौधों को उखाड़ कर जमीन पर दबा दे। तो भाई एक समट या फिर कांग्यारी रोग की भी हम जरूर बात कर लेते हैं। रोग भाई वाले मिट्टी में कुछ चमकीले और गहरे हरे दाने दिखाई देते, तो ये जो दाने भाई फूल कर मोटे हो जाते हैं और इनके भीतर काला पाउडर भरा रहता है, और इसकी रोकथाम ही भाई हमने HHB146 और HHB197 व HC110 व HC20 किस्मों का इसमें प्रयोग करना चाहिए अगर और अगेती बुआई में यो रोग कम इसमें लगता है। तो साथियों ये तो हमने करी बाजरे की अधिक पैदावार।

लेने के तकनीकी उपाय की। और इसी तरह साथियों, हम जो अन्य भी चर्चा आज की नसीहत में जरूर कर लेते हैं, इसमें चारे की कमी के समय पशु आहार कैसा हो, तो इसमें बात करें तो भाई देखो, गर्मी व सूखे के दौरान हरे चारे का जो मिलना कम हो जाता है, तूड़ी पुराली और जवार व बाजरा की कड़वी ऐसे चारे होते तो जिन पर पशुओं को निर्भर रहना पड़ता, तो लेकिन भाई इन चारों में पोषक तत्वों की मात्रा इसमें बहुत कम होती है और प्रोटीन खनिज पदार्थ व विटामिन इसमें नहीं के बराबर होते हैं। तो इसी तरह साथियों, जो इसके अलावा यूरिया सीरा मिश्रण को थोड़ी पर छिड़कर पशु के साथ साथ खिलाए जा सकते हैं, यह भी पशुओं के भाई जीवन के लिए पर्याप्त रहता है। और तूड़ी का जो यूरियाकरण विधि की बात करें तो भैया जो विधि है बहुत सरल से, इसके लिए भाई किसी उपकरण का भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें प्रयोग होने वाला जो मुख्य तत्व यूरिया में भी सभी किसान भाइयों के पास आसानी से भाई मिल जाता है। तो 100 किलोग्राम तूड़ी के उपचार के लिए भाई अधिकतम 4 किलोग्राम यूरिया और 65 किलोग्राम पानी की इसमें जरूरत पड़ती है। और 4 किलोग्राम यूरिया का लगभग 65 किलोग्राम पानी में अच्छी तरह में से घोल कर ले। इस घोल को 100 किलोग्राम तूड़ी में हाथों या फिर स्प्रे मशीन तक छिड़काव कर अच्छी तरह प्रकार से मिला देवे और फिर इसको भाई एक ढेर या फिर कूप की तरह इकट्ठा कर ले। इस तरह ज़्यादा तूड़ी का इस्तेमाल करना हो तो भाई उसकी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करके इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में इस ढेर को प्लास्टिक की चादर ढककर चारों ओर से मिट्टी से दबा देना चाहिए ताकि हवा इस तूड़ी के संपर्क में ना आए। और 4 हफ्ते में इस तूड़ी का जो यूरिया करण हो जाएगा और इसे खोलकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। और उपचारित जो तूड़ी को पशुओं को खिलाने से पहले भाई 2 दिन के लिए हवा धूप इसमें लगा देना चाहिए। इस प्रकार के उपचारित तूड़ी में कच्ची प्रोटीन की मात्रा 8-10% हो जाती है और पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो 15-20% इसमें बढ़ जाती है, जिससे पशु इस उपचारित तूड़ी की को अधिक मात्रा में खाते हैं। और ये जो चारा भाई जीवन निर्वाह के साथ साथ भाई थोड़ा दूध पैदा करने में भी इसमें सक्षम हो जाता है। तो अधिक दूध उत्पादन के लिए भाई इसमें दाना व खनिज मिश्रण मिलाकर भी हम इसमें खिला सके हैं। और यूरिया सीरा मिश्रण बनाने की विधि की बात करें तो भाई देखो, यूरिया सीरा मिश्रण बनाने के लिए भाई 10 किलोग्राम सीरा और 1 किलोग्राम यूरिया और 0.5 किलोग्राम नमक और 0.5 किलोग्राम खनिज मिश्रण की इसमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले भाई 1 किलोग्राम यूरिया को 10 किलो पानी में अच्छी तरह से घोल देवे, फिर इसे सीरे के साथ अच्छी तरह मिला देवे। इसके बाद इसमें 0.5 किलोग्राम नमक व 0.5 किलोग्राम खनिज मिश्रण मिला देवे। अब इस तरह से भाई तैयार यूरिया सीरा मिश्रण को 90 किलो तूड़ी में अच्छी तरह मिला दे, कई पशुओं की जरूरत के हिसाब से उसने खिला देवे। यूरिया सीरा मिश्रण को इसमें सीरा मिश्रण को अधिक मात्रा में बनाकर भी रख सकते हैं और जरूरत के अनुसार तूड़ी में मिलाकर रोजाना पेट भर पशुओं को खिला सकते हैं। तो इस तरह पशुओं का जो जीवन निर्वाह अच्छी प्रकार से होता है। तो भाई ये यूरिया सीरा मिश्रण बनाने की विधि की हमने बात करी। तो इस प्रकार से साथियों, चारे की कमी के टाइम में पशुओं को हम आहार देकर उनको भाई दूध से हम इसमें प्राप्त कर सके हैं, क्योंकि देखो जो अगर जो पशु भाई सेहत ठीक रहेगी तो हमने ही उसका लाभ है। तो भाई बातचीत हमने आज की नसीहत में ज़रूर करी और मुख्य चर्चा भी हमने आज ज़रूर करी। और बाजरे की पैदावार के बाद भाई और जो चारे की कमी के टाइम पशु आर के इन विषय के बाद भाई अन्य बातचीत भी हम जरूर करेंगे, लेकिन भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई ज़रूर इंतज़ार करें एक लोकगीत का। तो भाई ये लोक संगीत सुनाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में।

रोज डोलते दिखे थे के माता के लिखे लेख भी गाट तोलते दिखे थे बोझ बार कर्मा का जितना वेद खो।

तो साथियों, कार्यक्रम में अब आज का कृषि प्रश्न हम जरूर ले लेते हैं। भाई, हरियाणा का एकमात्र सरकारी हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है, ये शुरुआत में हमने पूछा था, और इसका जो सही उत्तर है साथियों, रादौर यमुनानगर। भाई, रादौर यमुनानगर में भाई ये जो एकमात्र सरकारी हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया और हरियाणा सरकार FND द्वारा भाई ये स्थापित किया गया था, और इसका जो सही उत्तर हमारे को भाई जो आयुष कौशिक सेक्टर 23 कुरुक्षेत्र से हमने ये जो सही उत्तर मिला, इसी तरह भाई सेक्टर 30 से ले लेते हैं, ये भाई पारस बबीता और मनोज रेखा निधि निशा और परिवार के सदस्यों द्वारा। इसी तरह साथियों, एक यमुनानगर से भी हम जरूर इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे को दिया है। तो भाई ये यमुनानगर के बाद जो सही उत्तर है भाई, ये हमारे को दिया यमुनानगर से रणधीर सिंह बांगड़ मेजो देवी और परिवार के सभी सदस्य। इसी तरह भाई गांव तेजा मोड़ी से भी, अम्बाड़ा से भी भाई सही जवाब आए, भाई बंसीलाल ने सही जवाब दिया है। और इसी तरह अम्बाड़ा से ही मनोज सबरवाल जो पत्रकार है, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। एक रोहतक से भी हमारे पास सही जवाब आया है, डॉक्टर जयसिंह खनगवाल, इनका भी सही जवाब है। और इसी तरह साथियों, बसंत लड़वाल, ये रोहतक से भी सही उत्तर आया, और पानीपत से भी हमारे पास सही उत्तर आया, और ये भाई भीम सिंह नागर और कृष्ण दुग्गल और परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब बातचीत जरूर बता देते साथियों, आज का जो मौसम अधिकतम 34 और न्यूनतम 28, और कल आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 36 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो भाई थारी संदेश हमारे गीत रहेगा। सोमवार को जो हम कार्यक्रम लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नए बाग व अन्य पौधे लगाने में सावधानी की बातचीत करेगी, और जानकारी भाई किसान कॉल सेंटर

0: ये भी एक पांच पांच एक, और आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। गन्ना फसल में भाई कीट नियंत्रण व देखभाल की भाई आप अच्छी प्रकार से जो कृषि विशेषज्ञ उनसे सलाह लेकर ही कार्य करें और सुनते ये संदेश।
1: महल दुहागी के दौरे तू।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही, और भाई एक निवेदन भी जरूर है कि 100 ग्राम योजना जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ही एक प्रमुख हिस्सा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के मामलों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना हमारा उद्देश्य है, तो साथियों इसका भी जरूर इस्तेमाल करें। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।

एफएम बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र। अब प्रायोजित कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम संसार। ग्राम संसार का भैया

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इब्रो इंडिया, गांव तखाना, तरावड़ी।
1: पापा सुनो, आपने इब्रो इंडिया का पैगाम सुना?
2: कौन सा पैगाम बेटा, जरा सुनाओ तो।
1: लो फिर सुनो।

0: अब समझा, खेतों में हमेशा वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
1: किसानों का हितैषी इब्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
2: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, जिस तरह की नामी ग्राम संसार है तो गांव गुआंड हमारी लोक संस्कृति और देश को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाते तो वो तमाम हम बातचीत इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं। और भाई हरियाणवी जो लोक संस्कृति है उसको तो हमेशा आगे बढ़ाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से रहते हैं। और लोक संगीत भी है और काफ़ी कुछ बातें महत्वपूर्ण हम जरूर करते हैं। और एक विषय हम जरूर लेकर आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा जो विषय साथियों, वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बात करेंगे। क्योंकि साथियों, अगर जो पेड़ धरा पर है तो हमारा जो जीवन सुरक्षित है, पेड़ पौधे होगी, हरियाली होगी तो साथियों जीवन लंबा चलेगा। और पेड़ पौधे नहीं होते तो साथियों जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो आज वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बातचीत करेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार के में। और लेकिन साथियों, पहले कुछ संदेश सुनते और संदेश के बाद प्यारा सा एक लोकगीत, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम ग्राम संसार में।

0: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थी

0: को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
1: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, आईटी, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIELM यूनिवर्सिटी कैथल।
2: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
3: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
2: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
3: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
3: 8708903436।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: समझा, खेतों में हमेशा वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों का हितैषी विप्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
1: साथियों, कार्यक्रम ग्राम संसार में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपका साथी विनोद मोरवाल। और साथियों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वृक्षारोपण के महत्व के बारे में हम बातचीत जरूर कर रहे हैं। और जब बात पेड़ों की करते तो वृक्षारोपण यानी कि पौध लगाना हमारे पर्यावरण और अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और पेड़ हमें भाई प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, तापमान कम करते हैं और भूजल का जो स्तर बढ़ाने और मिट्टी का जो कटाव रोकते हैं और भाई जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को बचाने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय है। और वृक्षारोपण के भाई कई लाभ भी है, लेकिन साथियों हम बातचीत जरूर कर रहे हैं पेड़ों की, क्योंकि एक समय ऐसे था भाई जो घर के आंगन में या फिर घर के आगे पेड़ जरूर होता था। आज कंक्रीट के जंगल जरूर हो गए, लेकिन आज भी जो सही व्यक्ति है साथियों अपने घर के आगे पेड़ जरूर लगाते हैं। तो भाई

0: आजकल तो हम देखते हैं कि भाई लोग कंक्रीट के जंगल जरूर करें, पक्का जरूर करें, लेकिन साथियों कोशिश जरूर करें एक पेड़ अपने घर के आगे जरूर लगाए। अगर जो जगह है तो आंगन है तो आंगन में तो पेड़ जरूर होना चाहिए, या फिर पीछे भी आप पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ों का महत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक समय ऐसा था साथियों कि हम पेड़ बहुत ज़्यादा लगाते थे, और पेड़ की जब हम बात करते, पौधों की बात करते, तो साथियों हमें ज़रूर उनकी याद में भी ज़रूर पेड़ लगाने चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी याद में आप पेड़ लगाइए, या फिर ऐसा भी हो कर सकते हैं आप कि भाई जिसका जन्मदिन है या फिर जिसकी एनिवर्सरी है या महत्वपूर्ण दिवस है, तो उस दिन भी आप पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ लगाने से भाई हमारा जो पर्यावरण है वो बेहतरीन बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी भाई पहल है एक पेड़ माँ के नाम, तो भाई पेड़ माँ के भी नाम आप लगा सकते हो। और उद्देश्य एक ही है कि भाई जो हरा भरा जो अपना वातावरण शुद्ध बनाना, इसका सही उद्देश्य है, और पेड़ हमें ज़रूर लगाने चाहिए। और जब इसके लाभ की बात करते तो शुद्ध हवा और जलवायु नियंत्रण की बात करें तो भाई पेड़ वायु प्रदूषण को फिल्टर करके हमें ताज़ी हवा देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक जो गैस है उनको अवशोषित करके भाई ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। इसी तरह जल संरक्षण और मृदा सुरक्षा की भी अगर जो हम बात करें तो भाई जो पेड़ है वो जल चक्र को बनाए रखने में सहायक तो होती है, और इनकी जो जड़ें हैं वो बारिश के पानी को जमीन के अंदर तक पहुंचाती है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और मिट्टी का जो कटाव है वो भी इसमें रुकता है। और वन्य जीवों के घर की बात करें तो भाई जो देखो जो जंगल में और पेड़ अनगिनत पक्षियों जानवरों और कीड़ों मकोड़ों का प्राकृतिक आवास होती है, जिससे पारिस्थितिक जो संतुलन है, इकोलॉजिकल बैलेंस है जिसको हम बोल देते हैं, वो बना रहता है। इसी तरह भाई आर्थिक और औषधीय लाभ की हम बात करते हो, भाई वृक्षारोपण से इमारती लकड़ी है, फल फूल और जीवन रक्षक औषधियाँ हमें प्राप्त होती है, तो जो स्थानीय आजीविका और अर्थव्यवस्था में भाई महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो भाई पर्यावरण को हरा भरा रखने में और भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने के लिए हमें सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षारोपण अभियानों को और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जो पहियों के बारे में हम अगर जो बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमें जुड़ना चाहिए। और आजकल तो साथियों एनजीओ के माध्यम से भी जो पर्यावरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और एक पेड़ माँ के नाम भी आप भी एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि जननी जिसने जन्म दिया उसके एक याद में एक पेड़ तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। और साथियों जिस तरह बरसात की हम बात करते हैं या फिर कहीं हम आते जाते तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, भाई देखो फल हम जिस तरह खाते हैं, भाई अब जिस तरह जामुन का मौसम है, आम का मौसम है, तो उसको खाने के बाद भाई जो उसकी गुठली होती है उसको आप एक जगह इकट्ठा करके जब आप कहीं अब जब आप घूमने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं जहाँ पर कच्ची जमीन आपको दिखती है, तो साथियों वहाँ पर आपको खुली ज़मीन में आप उनको फेंक दीजिए, ताकि भाई वहाँ पर एक पेड़ ज़रूर बने। और पहले ऐसे ही लोग करते थे, भाई देखो खाली ज़मीन दिखती थी उन चीज़ों को भाई गुठलियों को फेंक देते थे, जिससे भाई वहाँ पर एक जो पौध बनती और फिर वो पेड़ का रूप ले लेते। तो हरा भरा जो पर्यावरण है वो हमारे हाथ में, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए कि भाई देखो अगर जो आप मकान भी बनाते तो मकान के आगे भाई पूरा का पूरा भाई उसको फर्श ना डालें, बल्कि गेट के दोनों तरफ एक पेड़ की भी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, खड्डा खोद कर अपना पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और उससे एक तो ये बेनिफिट है भाई, आपका घर भी बढ़िया लगेगा, और आप जब गाड़ी लेते हैं तो साथियों उस छाँव के नीचे गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, अपनी कुर्सी घाल कर बैठ भी सकते हैं, और बेहतरीन आपको शुद्ध हवा भी मिलेगी। और अगर जो पेड़ पौधे हो गए तो साथियों वो वातावरण शुद्ध हवा भी आपको मिलेगी, पक्षी भी आएंगे, मनमोहक दृश्य जरूर होगा। तो कोशिश जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाए। तो साथियों अब एक संदेश सुनते हैं, संदेश के बाद ये लोकगीत कार्यक्रम ग्राम संसार में।
1: अब दर्द नहीं जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरोकेयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल।

साथियों, कार्यक्रम है ग्राम संसार और आकाशवाणी कुरुक्षेत्रा से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और आपने हमारे को ट्यून किया FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ से पर आकाशवाणी के कुरुक्षेत्रा केंद्र से। और कार्यक्रम में मैं साथियों जिस प्रकार से हम बातचीत कर रहे थे, आजकल जिस तरह मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं और मोबाइल पर साथियों प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ वन AIR है या अन्य ऐप है तो आप उनको जैसे डाउनलोड करते हैं तो लाइव कार्यक्रम हमारे जो यहाँ से चल रहे जैसे कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो आप हमारे से सीधे जुड़ सकते हैं जो लाइव कार्यक्रम है। इसी प्रकार से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को हम उस पर अपलोड करते हैं और आप कहीं भी उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कितनी बार सुन सकते हैं। तो साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए ताकि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकें। और बातचीत साथियों हम कर रहे हैं वृक्षारोपण की, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण है कि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ये जो विषय साथियों, अगर जो हम पेड़ों की बात करते हैं तो कोशिश ज़रूर करें कि एक पेड़ तो हमें ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, अपने बच्चों को भी ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि वृक्षारोपण से साथियों जो ऑक्सीजन का स्रोत है, जलवायु नियंत्रण है, वायु शोधन है और इसी प्रकार से प्राकृतिक और पारिस्थितिक लाभ भी हमें इसमें मिलता है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, सुनते ये संदेश और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।

0: वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
1: किसानों का हितैषी इब्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इब्रो इंडिया गांव तखाना तरावड़ी।
3: तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, और एक उम्मीद करते कि आप इस पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे और एक पेड़ जरूर लगाएंगे। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:30 अब होने को हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम हम विशेष रूप से अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रस्तुत करते हैं। वो देश की सेवाओं में रहते हुए, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हुए, न केवल भारत माता के आंचल की रक्षा करते हैं, अपितु हम सब की वो सेवा करते हैं। तो उन तक हमारी भी सेवा पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से रहता है। तो जल्दी से आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कुछ सदाबहार नगमे अपने फौजी भाइयों को। कार्यक्रम का पहला गीत समाधि फिल्म से।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन

0: नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
1: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोता दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज में इस विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे समाधि फिल्म का गीत मजरूह के बोलों को सुरों में ढाला था राहुल देव बर्मन ने। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं गजल सम्राट जगजीत सिंह। आइए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं कुछ सदाबहार गजलें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की कुछ सदाबहार गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में जगजीत सिंह की गाई कुछ सदाबहार गजलें एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोता साथियों, रात्रि के 8 बजते हैं। अब समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को और हमारे अन्य साथियों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हमारा शीर्षक रहेगा जिस पर कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे आपकी नज़र हम करेंगे और साथ ही उस शीर्षक से संबंधित कुछ बातें भी आपके साथ साझा करेंगे। और आज का हमारा शीर्षक रहेगा इस कार्यक्रम में, आज के इस अंक में, यारी, जिसे दोस्ती के नाम से भी हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये जो शब्द यारी है, ये अपने आप में बड़ा ही एक सुकून देने वाला एक बहुत शानदार शब्द है, जिसके अपने कुछ मायने भी हैं, मीनिंग भी हैं और इसका कुछ महत्व भी है। और ये एक ऐसा शब्द है जो एक रिश्ता बनाता है एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में, और ख़ास तौर पे युवा दोस्तों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, नौजवान साथियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एज फैक्टर होता है, आयु का एक प्रभाव तो रहता ही है जीवन के हर हमारे निर्णय में, बिहेवियर में, व्यवहार में, सोच में, जो भी एक्शंस हम लेते हैं, काम करते हैं। तो खैर, युवा दोस्तों से संबंधित आज का हमारा शीर्षक है और युवा दोस्तों को मनोरंजन की दुनिया में ले जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक अहम विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का भी इसमें हमारा युवा साथियों के साथ लगाव जुड़ाव रहता है। और आजकल का जो समय चल रहा है वो नौजवान साथियों के लिए नए कॉलेज में, उच्च शिक्षा में एडमिशन्स लेने का है, दाखिला लेने का है। तो उसमें आगे जीवन में क्या हमें पढ़ना होता है, कैसे किन किन विषयों का चुनाव करना होता है, इस पर हम एक बातचीत करेंगे। और आपको पहले सुनवाते हैं ये बातचीत, भेंटवार्ता, और इसका जो शीर्षक है वो है पढ़ाई में या एडमिशन्स में, दाखिले में, विषय चुनाव में सावधानियां बरतना। वार्ताकार हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, प्रिंसिपल कन्या महाविद्यालय डांड, जिला कैथल में। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता और उसके बाद कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे

0: नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं आजकल जो एडमिशन्स का कॉलेज में समय चल रहा है, और एडमिशन के लिए जब हम कॉलेज में जाते हैं तो नया नया बच्चा होता है तो कई तरह की उसमें दिक्कतें आ सकती हैं सामने, तो उसमें विषय चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस तरह से हमने करना है, कैसे वो करना है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता शर्मा जी, आप प्रिंसिपल हैं चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड में प्रिंसिपल हैं। मैडम संगीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो आप बताइए कि एडमिशन्स के लिए क्या करना चाहिए छात्रों को।
1: सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार कहती हूं और धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे यहां आकाशवाणी में बुलाया है। और एडमिशन जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि आज के समय में एडमिशन्स चल रही हैं और NEP 2020 के तहत बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस जो हैं बच्चों के पास अवेलेबल हैं, तो उनको जो है किस तरह की तवज्जो देनी चाहिए, किस तरह के सब्जेक्ट उनको चूज करने चाहिए, किस तरह से विषय का चयन करना चाहिए, ये उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज मैं आपको इसके बारे में जो भी जानकारी हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी।
0: जी, जैसे एडमिशन के लिए कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों को, कहाँ किससे कॉन्टेक्ट करे, यही नहीं पता चलता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, नया नई जगह होती है।
1: ऐसा है कि जब बच्चे स्कूल से निकल कर प्लस टू पास करने के बाद जब वो कॉलेज में पहुँचते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्कूल से डिफरेंट होता है। तो आजकल सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सभी कॉलेजेस को ये हिदायत दी हुई है कि वो अपने अपने कॉलेज में एक कंप्यूटर सेल बनाएंगे, और ये कंप्यूटर सेल जो है वो बच्चों की रजिस्ट्रेशन करने में, उनको उनकी किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि सभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती हैं, तो किस तरह से जो है बच्चों को गाइड करना है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, उसमें कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं, वो सारी सहायता जो है निःशुल्क सभी कॉलेजेस में प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है सभी कॉलेजेस में, जो एडमिशंस के रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज हैं बच्चों की, वो सारी उनके वहां पे उनका समाधान ऑन द स्पॉट किया जाता है।
0: जी, तो अब बात आती है विषय की। विषय चुनाव में क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से विषय चुनाव करना चाहिए?
1: देखिए, NEP 2020 के आधार पर आजकल एडमिशन्स हो रही हैं, और इसका जो मेन NEP 2020 का जो मेन पर्पस है शुरू करने का, वो यही है कि बच्चे के पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ना चाहता है, किस विषय को वो चयन करना चाहता है। और जहाँ तक विषय चयन की बात है, क्योंकि बच्चे नए नए कॉलेज में आते हैं, उनको विषयों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, तो मैं सभी बच्चों को और अभिभावकों को ये बताना चाहूंगी कि कभी भी किसी दूसरे के पीछे लग के कि वो ये विषय पढ़ रहा है तो मुझे भी यही विषय पढ़ना है, ये कभी भी ना तो अभिभावकों को जो है बच्चों पे प्रेशराइज बच्चों को करना चाहिए, और ना ही बच्चों को दूसरों के पीछे लग के करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी आपने विषय को चयन करना है, उसको चूज करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी रुचि किस में है। रुचि जो है, अगर आप जिस सब्जेक्ट में भी आपकी रुचि होगी उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर पाएंगे, उसमें आप अपना ज़्यादा समय दे पाएंगे, उसमें आप ज़्यादा निखर के आप उसमें अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो बच्चों को विषय चयन करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी उस सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं।
0: जी,
1: दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि कई बार बच्चों को ये तो लगता है कि मेरी इस सब्जेक्ट में रुचि है, मान लीजिए साइंस है, मेरी साइंस में रुचि है, तो क्या आपके पास उसको करने की, उस लेवल की मेहनत करने की क्षमता है?
0: जी,
1: तो एक रुचि होना और उसके साथ साथ आप अपने आप

0: योग्य समझते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के,
1: जी
0: तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो है उसमें योग्यता है, क्या हम मैथ जैसे टफ सब्जेक्ट या साइंस जैसे टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तभी उतना उस समय दे सकते हैं, नहीं उसको उतना समय दे सकते हैं, हमारी सरकमस्टांसिस कैसी हैं, घर की
1: बिल्कुल
0: कोई जिम्मेवारियां तो ऐसी नहीं है कि हम इतना टाइम ना दे पाए
1: जी।
0: तो ये योग्यता जो है वो भी हमारा जो एप्टीट्यूड है वो किस तरह का है, क्या हम जो है ज्यादा लिटरेचर या लैंग्वेज के प्रति हमारा ज्यादा रुझान है या हमारा टेक्निकल साइड पे हमारा ज्यादा रुझान है, हमारा ये चीजें हमें जरूर देखनी चाहिए
1: जी
0: विषय चयन करते।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसमें कई बार देखा जाता है कि अक्सर बच्चे ये करते हैं कि एक मान लो दो लड़कियां हैं साथ में जा रही हैं गांव से कॉलेज में गई हैं इकट्ठी, तो उसने वो सब्जेक्ट ले लिया, उसने भी वो ले लिए, जबकि उनका दोनों का अलग अलग माइंड सेट है, अलग अलग उनका समझने का वो रहता है, ये अक्सर ये चीजें होती है।
0: इसीलिए हम बच्चों को वहाँ पे जो हमने एक काउंसलिंग सेल जो बनाया वो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि हम बच्चों को काउंसिल कर सकें कि भी आप अपनी योग्यता और अपने उसके हिसाब से। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भी देखना जरूरी है कि जिस विषय को मैं चूज कर रही हूँ उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज आगे क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पढ़ने के बाद क्या करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने भविष्य को संवारना है। तो ऐसे विषय चयन करते हुए हमें ये चीजें जरूर देखनी है कि इसमें विषय में आगे कितने विकल्प हैं कैरियर के लिए।
1: जी जी।
0: तो ये विकल्प जानना भी विषय चूज करने से पहले बहुत जरूरी है। आने वाले समय में 10 से 15 साल में किस तरह के विषयों पे आगे और काम बढ़ेगा, किस में कैरियर ज्यादा होंगे। जैसे मैं आज की बात करूं कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, डाटा साइंस का जमाना है, इस तरह के विषय जो है, एनवायरमेंटल साइंस पे हमें काम करना है क्योंकि हमारा एनवायरमेंट बहुत पोल्यूट हो रहा है। साइकोलॉजी जैसे विषय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बंदा मेंटल स्ट्रेस और उससे गुजर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह के विषय अगर हम चयनित करते हैं अपनी रुचि के हिसाब से, तो मैं मानती हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो आपको ज्यादा मिलेंगी।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके अलावा और क्या हो सकता है?
0: इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोई विषय चूज करते हैं तो हमें ये सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि हम इसमें आगे हायर एजुकेशन के लिए भी प्रोसीड करेंगे, तो ये भी देखना है कि आगे हायर एजुकेशन में कितनी अपॉर्चुनिटीज इस विषय को लेके जो है अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं कि ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे आसपास कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कोई विकल्प ही ना हो।
1: बिल्कुल।
0: तो ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है देखनी कि अगर मुझे जो है उच्चतर शिक्षा के लिए जाना है तो मेरे लिए कितने अवसर आसपास उपलब्ध हैं
1: जी,
0: और उस विषय को पढ़ने के बाद मैं कितनी जल्दी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, कितनी जल्दी मैं जो है वो आय के संसाधन मेरे लिए जुड़ सकते हैं
1: जी। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। इसके बाद हम एक और, मैं आपसे इससे हटके थोड़ा सा सवाल है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आजकल जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कि पहले हमारे समय में होता था कि बीए कर ली, बीकॉम कर ली, एमए कर ली, आज बीए भी कई तरह की होगी, बीए विद अलग अलग स्पेशलाइजेशन, बीए में ही अलग है जैसे आपने और एक्टिविटीज के साथ, या कोई आपने उसमें करना है जैसे बीएससी करनी है तो उसमें फैशन डिजाइनिंग आ गई, या इस तरह के कोर्सेज भी हैं, तो वो उसके साथ हो सकते हैं या नहीं?
0: ऐसा है कि जब हम अपने समय की बात करें तो उस टाइम पे जो परसेंटेज बच्चे हायर एजुकेशन में जाते थे वो कम थे। आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है, तो जब हमारा रेट जो है हायर एजुकेशन का, ज्यादा बच्चे एनरोल हो रहे हैं, ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन उतना बढ़ने की वजह से अगर हम नॉर्मल बीए एमए करते हैं तो उसमें जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसलिए कॉलेजेस को भी चाहिए और ये रिक्वायरमेंट भी है कि हम अलग कोर्सेज को साथ में स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ें।
1: अच्छा।
0: ताकि बच्चा जो है इमीडिएटली ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर वो चाहे तो वो कोई अपना इस तरह का कैरियर ऑप्ट कर सके
1: जी।
0: तो इस विषय में जैसे हमारे सांसद नवीन जिंदल जी हैं, वो भी हरियाणा में बहुत हाई लेवल पे जो है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बच्चों को करवा रहे हैं। जैसे अगर मैं चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड की भी बात करूं तो एज प्रिंसिपल और एज मैनेजमेंट हमारा ये विजन है कि हमारा हर एक बच्चा बीए एमए की डिग्री के साथ साथ एक ऐसा कोर्स करके निकले स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो, या चाहे वो कोई ब्यूटिशियन का कोर्स हो, वीएलसीसी का कोर्स हो, कि हर बच्चा जो है एक ना एक साथ में स्किल लेके यहाँ से निकले ताकि

0: अगर वो चाहे तो वो साथ के साथ उसको अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपनी अर्निंग जो है वो अपना शुरू कर सके और नौकरी लेने की बजाय वो अपना काम शुरू
1: कर सके। बिल्कुल सही बात है, मैं इसी विषय पे आना चाह रहा था कि बच्चे जो हैं सिर्फ एक वो रटे टाई एक लाइन पे चलने की बजाय आप अपने में ऐसा कैलिबर पैदा करें कि आप जो एक किसी भी स्किल को लेके आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में उसको अपना उद्देश्य भी बना सकते हैं और वो आपको जो है जो इनकम जनरेशन का साधन ही बनेगा। इसी में जैसे कई तरह के कोर्सेज आपने बताए कि जैसे वेब डिजाइनिंग का है, एआई का है या दूसरे आप कराते हो, तो इसी तरह से जैसे फूड से रिलेटेड भी कोर्सेज होंगे आपके यहाँ?
0: हमारे पास जो है वो होम साइंस सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। अभी हम जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं और इस तरह के हम कोर्सेज भी करवा रहे हैं, चाहे वो 6 मंथ्स कोर्सेज हों चाहे वो 3 मंथ्स कोर्सेज हों, जिसमें जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। आज हर आदमी जो है वो शारीरिक बीमारियों से जूझ रहा है और अगर हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर हम बच्चों को जानकारी देते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाते हैं, तो यही बच्चे जाके एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट के काम कर सकते हैं,
1: डाइटिशियन
0: बन सकते हैं। इसी तरीके से इसी कड़ी में जुड़ते हुए हमने पिछले साल भी और इस साल भी बच्चों को मशरूम कल्टीवेशन के लिए ट्रेनिंग दिलवाई थी, ताकि वो बच्चे मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग लेके जाके जो है
1: अपना
0: वो अपना काम शुरू कर सके। तो इस तरह से इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है क्योंकि होम साइंस के बच्चे जो है वो भी पढ़ते हैं,
1: बिल्कुल
0: डिजाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो हम टाइम टू टाइम उनके इस तरह के 3 मंथ्स कोर्सेज जो है पेपर क्राफ्ट से रिलेटेड डिजाइनिंग के कोर्सेज, इस तरह से कोर्सेज जो
1: है या उस तरह से उनको अर्निंग है,
0: उनको जो है हमने यहाँ कॉलेज में ऐसे कंसेप्ट भी चलाए हुए हैं अर्निंग वाइल लर्निंग। तो वेस्ट मटेरियल से जितने भी हम चीजें बना के डेकोरेटिव आइटम्स बना के मार्केट में बेच सकते हैं, अभी हम कॉलेज लेवल पर शुरू कर रहे हैं कि बच्चे बना के लाते हैं और वो बच्चों को ही आगे एक मेला सा लगाते हैं, रोजगार मेला, और उसमें वो बच्चों को ही आगे बेचते हैं। तो ये एक जस्ट शुरुआत है बच्चों को ये बताने के लिए कि आप पढ़ते पढ़ते भी अपनी अर्निंग कर सकते हो।
1: और क्या कहना चाहेंगी आप इस विषय में, विशेष लक्षण में, और क्या क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि बच्चों अपने ये आपका जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल समय है, इसमें आप अपने विषय को बहुत ही सूझ से और बहुत ही अपनी रुचि के हिसाब से अपनी योग्यता के हिसाब से इसको चयनित करें और अपने साथ हमेशा जब भी आप ग्रेजुएशन की तरफ जाएं तो अपने साथ एक स्किल अपनी रुचि के हिसाब से जरूर आपके पास होनी चाहिए, ताकि समय आने पर आप उसको यूज करके जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सके, रोजगार प्राप्त कर सके।
1: जी बिल्कुल, आप जो है अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सके उसमें और उसी को आप आगे भी एज ए कैरियर भी उसका चुनाव कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर संगीता शर्मा जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बताया कि किस तरह से जो छात्र हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो विषय को चुनाव को लेकर के अपने आप को जो है जानकारी ले सकते हैं और उसमें जो क्या क्या उनको चाहिए करना वो कर सकते हैं। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तो दोस्तों, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे उच्च शिक्षा में विषय चुनाव पर सावधानियां। वार्ताकारती संगीता शर्मा, प्रिंसिपल कन्या महाविद्यालय ढांड, और इनसे बात कर रहे थे महेंद्र मोहन शर्मा। तो दोस्तों, कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में आपको हम सुनवा रहे हैं, यारी शीर्षक पर कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। तो आइए आपको यारी शीर्षक पर शुरुआत में सुनवाते हैं हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और इसके बाद इस शीर्षक पर हम करेंगे आपसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, यारी शीर्षक पर कुछ फिल्मी गीत आपकी नजर आज इस कार्यक्रम में। तो यारी शब्द जो हम महसूस करते हैं, देखते हैं, इसमें वैसे तो जीवन के हर उम्र में या आयु वर्ग में इसका अपना अपना एक महत्व होता है। एक यारी का जो एक चरण होता है या जो एक अवस्था होती है वो होती है दोस्तों बचपन। बचपन एक वो अवस्था जो ईश्वर का ही एक रूप देखने को मिलती है।

बहु शानदार जीवन के वो पल, वो आयु जिसे हर कोई बार बार जीना चाहता है, लेकिन काश ऐसा सच में हो पाता। दोस्तों, संभव नहीं है। प्रकृति का नियम है, उसके तहत ही हमें जीवन में चलना है, आगे बढ़ना है। हालांकि बचपन के लिए हम सभी बहुत ज्यादा उसके लिए हम कह सकते हैं कि तरसते हैं। जी हां, सच में तरसते ही हैं। एक ऐसा जीवन जो किसी लाग लपेट में नहीं उलझा होता, कोई लालच नहीं, कुछ लंबे चौड़े जीवन के सपने नहीं, कुछ बातें नहीं, लेकिन जीवन जीना है, बेखौफ जीना है, बेफिक्र जीना है। जीवन का असली आनंद इसी अवस्था में मिलता है और वो लेना होता है। स्कूल गए, विद्यालय गए, शिक्षा प्राप्त की, दोस्तों संग खेले कूदे, समय व्यतीत किया, जिंदगी भर की स्वर्णिम यादें बन के रह जाती हैं। वो जो दोस्त, वो जो यार बचपन में हमारे साथ होते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि वो जीवन भर साथ नहीं चल पाते। एक आयु आती है जब हम सबको अलग अलग राहों पे आगे बढ़ना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जीवन के पहले 15-20 साल हम सभी शायद इकट्ठे रहते हों, लेकिन उसके बाद बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। और जब उन दोस्तों को मिलते हैं, यारों को मिलते हैं, और वो बिताए हुए यारी के अनमोल पल हमारे साथ दोबारा आते हैं, जो दोस्तों को एक लंबे समय के बाद देखते ही जो खुशी चेहरे पर आती है, जिससे हमारा मन अति प्रसन्न होता है, जिसकी कीमत हम कुछ भी देकर नहीं चुका सकते, वो होती है यारी। ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता है। युवा अवस्था आती है, तरुणावस्था को पार करते हुए युवावस्था की तरफ हम बढ़ते हैं, किशोरावस्था से गुजरते हैं, तब एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। उसमें भी कई बार संबंध इतने पक्के मजबूत हो जाते हैं, नए लोगों से जीवन में मिलना होता है, कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं जो जीवन भर साथ साथ चलते हैं, और कई बार अजनबियों के साथ इतने अच्छे संबंध बन जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ जीवन में ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी देखते हैं, दूसरों के साथ भी ऐसा होते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिश्ता है ना, ये अपने आप में कमाल है। इसकी व्याख्या करना, इसको शब्दों में बताना बड़ा कठिन हो जाता है। इसको तो महसूस किया जा सकता है जो जिनको ये अनुभव प्राप्त होते हैं। तो खैर, बातें अब यहां पर विराम देते हैं, आपको मनोरंजन की दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि हमने आपसे तरुणावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था की बात की है। तो एक ऐसा ही गीत युवावस्था से जुड़ा हुआ सुहाग फिल्म का आपके लिए लेकर आए हैं। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, और फिर बातें इसके बाद आगे बढ़ाएंगे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों, यारी शिक्षक पर जब हम बात कर रहे हैं, तो यारी शिक्षक को हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके मायने कुछ अपने आप में बहुत गहरे और बहुत बड़े बड़े भी निकलते हैं। जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, निश्चित रूप से उसके अनुभव बढ़ते हैं, उसकी समझ पे भी फर्क देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कि इंसान दिमागी रूप से ज़्यादा परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, उसके व्यवहार में, उसके एक्शंस में काफ़ी मजबूती देखने को मिलती है। वो शुद्धता और प्योरिटी की तरफ ले जाती है, जिसमें वो रिश्तों में भी ये चीज़ें निभाता है, या यूं कहें कि हम सब भी इसका पालन करते हैं और जीवन में ऐसा हम सब के साथ होता है। तो यारी शब्द को हमने अलग अलग आयु वर्गों में जो बांटा है, उसमें अब आपको लिए चलते हैं एक परिपक्वता की जो निशानी आयु में होती है। और जंजीर फिल्म का ये गीत, जो कि प्राण साहब के डांस पर फिल्माया गया, बहुत शानदार नृत्य उन्होंने किया और अमिताभ बच्चन के लिए ये फिल्म कैरियर की सबसे सुपरहिट फिल्म रही। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, सदाबहार गीत का।

तो श्रोता दोस्तों, अभी जो गीत आप सुन रहे थे वो था जंजीर फिल्म से। और अब कार्यक्रम में समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दें। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू

0: रहा है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
3: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
2: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 48,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
2: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान कर

सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफल

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना था।

0: आएगी कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
1: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर। ये भरत व्यास के अपने विचार थे, सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

0: भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया छिप छिप कर मत देखो।
1: हमको नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी।
2: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, हमरी नजर भर जाएगी, हमरी नजर भर जाएगी, नजर भर जाएगी, नजर।
0: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू,

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला, कारीगर नवरंग।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंगा।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी,

यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरतव्याज पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरु

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित आपकी जो फरमाइश हमें मिली है उनको हम कार्यक्रम में पूरा करवाने की कोशिश करेंगे और सभी श्रोताओं के नाम भी पढ़ पाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि सूची आपकी फरमाइशों की बहुत लंबी है। और आपसे अनुरोध रहेगा कि अब हमें कोई भी श्रोता दोस्त अपनी फरमाइश ना भेजे, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम में शामिल करना मुश्किल रहता है और कार्यक्रम में व्यवधान भी कुछ ना कुछ बनता है। कृपया आप सहयोग करें और कार्यक्रम का आनंद लें। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है द ट्रेन। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने। और पसंद करने वाले दोस्तों के नाम गीत के बाद।

तो दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी द ट्रेन और आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी आप सब, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, आप सब हैं बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से। और अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का, ये हमारे साथी हैं छत्तीसगढ़ लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास रानी और उज्जवल दास। ये हमारे साथी हैं इसी गीत को पसंद करने के लिए गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन और परिवार के अन्य सदस्यगण। गांव दूल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये हमारे साथी हैं जसपुर उत्तराखंड से, डिस्ट्रिक्ट का नाम इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। ये हमारे साथी हैं इस गीत के लिए। कलानूर जिले का नाम इन्होंने भी नहीं लिखा है, नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। नेहरू चौक पैठन से आप हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबीसिया। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। ये हमारे साथी हैं इसी गीत के लिए। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंगेल। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम चांदनी रातें पहला गीत आपने सुना। घर फिल्म से ये गीत आपकी नजर, आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लता मंगेशकर की आवाज में घर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को पसंद करने वाले दोस्त आप सब हैं। मॉडल टाउन करनाल हरियाणा से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। आप सब हैं गांव कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोणे, योगिता हांगोणे, प्रियाली, पार्थ और इनके परिवार के सदस्यगण, ये हमारे साथी हैं। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना, ये हमारे दोस्त हैं।

हितेंद्र दास असम से, और ये संदेश हमारे दोस्तों का आया है खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आप हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से आप हैं बिल्लू सिंह चिड़ालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनके परिवार के साथी। रिमनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ये हमारे साथी हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अनमनदीप, और ये हमारे दोस्त हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आप सब हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। ये हमारे दोस्त हैं सनावद से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, चेतन, दीक्षा, कुश मूणत, आप सब हैं बोरखेड़ा पितरामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। और रोहिदास चौक, पंडरपुर सिटी, महाराष्ट्र से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा। दोस्तों लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए ये गीत जिसे हमने लिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात।

बरसात की एक रात, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। एक बार फिर से आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप आनंद ले रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का चांदनी रातें, और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र नवीन। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम में इस गीत का और पसंद करने वाले दोस्तों के नाम गीत के बाद।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। पसंद करने वाले हमारे दोस्त आप सब हैं। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोरीबाई प्रभुलाल ये हमारे दोस्त हैं। आप सब स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप गुरनूर शुभदीप गुरलाल अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से आप हैं। अशोक श्याम कुमार प्रमीला आसमा दीपक और अनुश्री ये हमारे साथी हैं। पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्वनी मंगलाबेन और राजेंद्र ये हमारे साथी हैं। चंद्र नगर सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग आप सब हैं। अनीका काम्बोज गुरवीर सिंह नीरज देवी सचिन कुमार शिव कुमार कमलेश देवी राहुल सोनिया तहसील रादौर यमुनानगर से

ये हमारे दोस्त हैं कलमंडी गांव खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और समस्त राजपूताना परिवार। ये हमारे साथी हैं कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरहाज, फरहीन फरहाज, फारिया ताहिरा, उमरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। ये हमारे दोस्त हैं पुरुषोत्तम कुमार, शिवा लोहट, शेख जफर हसन, रंजीत कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह से, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से आप सब हैं। और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज और बहुत सारे दोस्त। ये हमारे दोस्त हैं कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत कुमार, राधा तंवर, अर्चना विक्रम, साक्षी ढाबी, आप सब हैं। गांव सिंधरी, जिला बालोतरा राजस्थान से। तो दोस्तों लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम एक सपेरा एक लुटेरा।

शेरवानी स्कूल गंजरुड़वाड़ा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबाना, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये हमारे दोस्त हैं ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। आप सब हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, ये हमारे साथी हैं। श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिडवे, श्रावण और अनिकेत, ये हमारे साथी हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव भानुप्रिया कृष्णगंज बिहार से, आप सब हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। चलो दोस्तों, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। और दोस्तों लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नील कमल फिल्म का ये गीत।

नील कमल फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। पसंद करने वाले दोस्त आप सब, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना और इनके दोस्त, ये संदेश हम तक जो आया है, आप हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों का, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आप हैं अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक, ये हमारे दोस्त हैं।

सिंह राजपूत, शत्रुघ्न गौरव सिंह, जानवी दर्श आप हैं महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का

हमें आपके संदेश पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए हमें रुकना पड़ता है। खैर, थोड़ा साफ साफ और खुला खुला लिखेंगे, शब्दों के बीच में गैप डालकर लिखेंगे, जगह बनाकर लिखेंगे तो पढ़ने समझने में आसानी होती है। आशा है कि आप हमारी बात समझेंगे। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव ये हमारे साथी हैं। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बराहनुद्दीन फजान अल्लाह फरहान अल्लाह और इनके परिवार के अन्य सदस्यगण। श्रोता दोस्तों, ये संदेश सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक चौहान ये हमारे साथी हैं। गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविस और मुनेश देवी ये हमारे साथी हैं। गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महक प्रीत कौर, सहज प्रीत सिंह, गांव तंगोरी जिला मोहाली पंजाब से। और लीजिए, अब आपको लिए चलते हैं राजकुमार फिल्म के इस गीत के पास, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को पसंद करने वाले दोस्त आप सब, राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, गायत्री पुजारा, साहिल पुजारा और रोहन, आप सब शिव कॉलोनी रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा से।

श्रोता दोस्तों, लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है स्वयंवर।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम का ये है अंतिम गीत। इसके साथ ही कार्यक्रम चांदनी रातें समाप्त करने की अपने दोस्त नवीन को इजाज़त दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का

0: प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production